बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दी की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनुप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेक्ने सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
4: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
5: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
4: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: टीएनसी अप्लाई।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालचाल है जी? खुशामुदीन, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में, सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए। हेलो जी, हेलो, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बिंदास मॉर्निंग और मैं हूँ आपका बिंदास दोस्त RJ आनंद लेकर आ गया हूँ एक और ब्यूटीफुल मॉर्निंग की ब्यूटीफुल वाइब, जहाँ पर आप गर्मा गर्म एक कप चाय की प्याली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हो, वहीं पर मैं आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारे गाने, फुल ऑन एंटरटेनमेंट का पटारा लेकर आ गया हूँ, ताकि जो आपकी सुबह की चाय है ये और भी झकास हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:20 और आपको बताते चले आज तारीख है 16 जून, यानी 16 जून 2026। बहुत ही स्पेशल और शानदार तारीख है। मौसम क्या कहता है आज का जरूर बताएंगे। अजी मियाँ, हमने कहा था कि कल मौसम थोड़ा सा ऐसा ही रहने वाला है कि क्या बताएं, लेकिन शाम होते होते थोड़ा सा मौसम हुआ भी चेंज, लेकिन वापस गर्मी ने तो हालत खराब कर दी थी यार, क्या ही बताएं। खैर, आगे बढ़ेंगे, आप जुड़ चुके हैं RJ आनंद के साथ, आज का वेदर क्या कहता है डेफिनेटली आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छे ट्रैक जो आपकी सुबह को थोड़े से ऑसम बना देंगे, यानी कि आपकी मॉर्निंग को थोड़ी लाउड बना देंगे। हाँ जी, फिलहाल आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर, ठीक है? अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है जी। एक बेहतरीन गाने के साथ हो गई है आज के सफर की शुरुआत। व्हाट्सएप कीजिए ना, अपने हालचाल बताइए मुझे 9837896896 पर, 9837896896 ये नंबर है जहां पर मैं आपके साथ ढेर सारी बातें करूंगा और आप भी मेरे साथ बातचीत करने को तैयार बैठे हैं, मुझे पता है। चलिए, मंगलवार की सुबह है, एक वार्म वेलकम करेंगे आप सभी का और बेहतरीन गानों के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

या जो भी बोलो, ऐसी गाने सुन के सुबह सुबह एक्सरसाइज तो अपने आप अंदर से बाहर निकल जाती है। इतने अच्छे गाने, इतने बेहतरीन गाने बॉलीवुड में बने हुए हैं यार, जिनको सुन के मजा आ जाता है। उदित नारायण की के अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुन लिया फ्रॉम द फिल्म तेरी नाम का ट्रैक। एंजॉय करते हुए आगे बढ़े आप और मैं। वेलकम बैक है आप सभी का एक बार फिर से। आप इस वक्त जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अगर आप भी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, ढेर सारी बातचीत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं 9837896896 के जरिए, और अब प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कुछ बड़े प्यारे मैसेज मेरे पास पहुंच गए हैं। हेलो आनंद भाई, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? सुबह सुबह आपको सुनकर एक ताजगी का एहसास महसूस होता है, और आप जब रेडियो पर साउंड करते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी पॉजिटिविटी हमें मिल जाती है। आपकी आवाज़ सुनकर हमारा तो दिन बन जाता है, क्या बात है। ये मैसेज हमारे पास आया है शुभम वर्मा जी का, इन्होंने मुझे सूर्यनगर से मैसेज किया है। शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आनंद भाई, क्या हालचाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, आप तो माहौल ही बनाकर रखते हो, क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। जयंतीपुर से मैसेज आया है हमारे पास, ये खालिद साहब का, शुक्रिया मेरे भाई। एक और संदेश पहुंच गया है जुल्फी भाई का, लिखते हैं हाय आनंद, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है भाई? बहुत बढ़िया। लिखते हैं आनंद यार, आप क्या खाकर आते हो, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है और आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बोलते हैं, हम सभी का दिन खूबसूरत बना देते हो। कोशिश तो यार यही होती है जुल्फी भाई की, हर सुबह कुछ बेहतरीन।

बातों के साथ आपसे रूबरू होया जाए। एंड जब हम आपसे मुखातिब होने आते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आते हैं ना, यही तो खास चीज है जो हमें औरों से स्पेशल बनाती है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने इतना खूबसूरत मैसेज हमारे नाम जो है भेजा। ये पैगाम एक मैसेज पहुंच रहा है हमारे पास, शिवानी का लिखती है, हाय गुड मॉर्निंग, गायत्री नगर में आपको सुन रही हूँ आनंद। एंड मौसम बहुत ही ऑसम है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखें। और आपके लिसनर्स को बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत एक पॉजिटिव हैप्पीनेस के साथ करेंगे तो लाइफ बहुत ही मजेदार तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट देगी। वाह गजब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:34, एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपको एक प्रोग्राम की ओर लेकर चलेंगे। हम आपको आजकल खाने पीने के से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स सुनवा रहे हैं जिसमें आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है श्रोताओं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो के जरिए पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं आपके काम में आए, आपके रूटीन में आए और आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मिले। चलो एक काम करते हैं, एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो फिर आपसे और भी ढेर सारी चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। स्टूडियो का नंबर बहुत प्यारा है 9837896896, ये वो नंबर है जिसके जरिए आप मेरे साथ अपनी प्यारी प्यारी बातें साझा कर सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे विचार, अपनी जो भी आपकी थॉट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं अपने संदेश के जरिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। चलिए काम करते हैं, एक ट्रैक निकालते हैं बेहतरीन सा और इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक निकल गया है, उदित साहब की आवाज है, अलका याग्निक जी दे रही है साथ, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक। इसी गाने को सुनते हुए हम आपको बोलेंगे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई सुबह।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंद, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एज सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ें, तो वो हमें डे बाय डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानकटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर भी पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानकटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज़ से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज़ मिल गई, तो उससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: बहुत ही बेहतरीन गाना, वेलकम बैक है आप कहीं मत जाना, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 बजने को है स्टेशन क्लॉक में और अभी फिलहाल आप सभी का एक वार्म वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी सुबह की बेहतरीन शुरुआत कर रहे होंगे। अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो जय श्री राम। आज बड़ा मंगलवार है, देखिए इस बार बड़े मंगलवार चार नहीं पूरे आठ हैं और आज सातवां बड़ा मंगलवार है। हाँ जी, तो आज भी बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे प्रसाद के वितरण, शरबत के वितरण, भंडारे के वितरण आज आपको मिलने वाले हैं। ढेर सारी मंदिरों के बाहर आपको भीड़ लगने वाली है, श्रद्धालुओं की बहुत सारी भीड़ मिलने वाली है शाम होते होते। अपने आप में बहुत ही खास है आज का दिन और आज का इतिहास क्यों खास है, 16 जून की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हैं आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं इनसे कह रहा हूं जरा पाजी थोड़ी सी मेरी तारीफ करो यार।
1: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: मतलब देखिए हमारा जो 9 बजे का आर है वो शुरू हो गया है, वेलकम बैक है आप सभी का, स्वागत अभिनंदन। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाल चाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? देखो यार, बढ़िया ही चलना चाहिए और फिलहाल बढ़िया से मुझे यार कि मौसम भी बढ़िया ही चल रहा है। जरा मौसम की तरफ एक नजर डालेंगे हम, क्या कहता है आज का मौसम बाबू शाह। आज का मौसम ये कह रहा है कि भैया अभी जो करंट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आज दिन है सानी सानी और गर्मी भी होने वाली है पूरी पूरी। हवा चलने वाली है 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि हवाएं बहुत कम चलेंगी लेकिन चलेंगी जरूर। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 39% दिखा रहे भाजी यहाँ पर परसेंट, यानी 39 डिग्री सेल्सियस, एंड एयर क्वालिटी कतई अच्छी नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ इस धूल मिट्टी से बच के रहना है आपने। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भाई मास्क लगा कर ही बाहर भेजिए, अगर उनका काम नहीं है तो उनको मत ही भेजो यार कहीं पर। होता है ना शाम को वॉक करने के लिए निकलते हैं अंकल जी, तो जरा संभल के निकलिए। विजिबिलिटी ठीक ठाक दिखा रहे हैं भाई साहब, फील लाइक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेदर ठीक ठाक ही है और ये धीरे धीरे 39 तक पहुंच जाएगा, अभी 32 है एंड आई डोंट नो कि भैया गर्मी बढ़ेगी या घटेगी, अब उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल तो देख के ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाली है गर्मी यार। चलो जी कोई नहीं, फिलहाल बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में, यानी कि 16 जून को क्या स्पेशल है, क्या कुछ खास है, बिकॉज हर दिन की तारीख हमें कुछ ना कुछ स्पेशल बताती है, कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरीन लेकर आती है। और आज का दिन क्यों खास है, क्या कुछ स्पेशल है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ये, और लेडीज एंड जेंटलमैन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए बात करते हैं आज के दिन के बारे में, आज का दिन क्यों खास है, यानी कि आज के दिन क्या स्पेशल हुआ। तो आपको बता दें आज के दिन सन 1930 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना जो है हुई थी, श्रोताओं आज के दिन। और इसके अलावा आज के दिन और भी तमाम सारी बातों को लेकर इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो शायद हमारा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम आपको सिर्फ वो आते हैं जो मेन मेन पॉइंट हैं, जो मेन मेन चीजें आज के इतिहास को स्पेशल बना रही हैं।

श्रोताओं, आज के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुरार की लड़ाई लड़ी गई थी सन 1898 को आज के दिन। और आपको बताते चले, आज के दिन जो है फोर्ट मोटर कंपनी चालू हुई सन 1930 में। आज के दिन 1983 में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और आपको बताते चले, आज ही के दिन और तमाम सारे हम दिग्गज पर्सनैलिटी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं, जिनके बारे में आज के दिन बात करना डेफिनेटली बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, आज रोहित श्रीवास्तव जी का बर्थडे मनाया जाता है, जो भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक वैज्ञानिक है। 1976 में इनका जन्म हुआ। श्रोताओं, आज ही के दिन और आपको बताते चले, हेमंत कुमार जो हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हैं, सन 1920 में आज के दिन उनका जन्म हुआ। और आज के दिन क्या बात कहने वाले हमारे मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती जी का भी आज के दिन जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। सन 1950 में इनका जन्म हुआ था। काफी वर्सेटाइल एक्टर है, हिंदी फिल्मों की काफी सुप्रसिद्ध अभिनेता है। मैंने तो बहुत सारी फिल्में देखी है मिथुन दा की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी मूवीज देख के बहुत मजा आ जाता था यार। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें जो मैंने आपको इमीडिएटली बता दी हैं। फिलहाल और क्या स्पेशल है आज की तारीख में, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे 9:05 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आज आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करेगा, बस जरा सी देर में। वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एक अच्छा गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बिकॉज अच्छे गानों के साथ जब शुरुआत होती है तो सुबह ऑटोमेटिकली बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। क्या मैंने सही कहा रियो जी? बिल्कुल अपन सही बोलता जी। सिंह इस किंग साहब, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, साथ में श्रेया घोषाल देंगी साथ। ट्यूसडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, फटाफट अपने हालचाल बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9837899689 पर। ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप करो। चलो जी शुरू करते हैं, 3 2 1 Go, enjoy!

बेहतरीन गाना अभी आपने सुन लिया। हेलो जी, हेलो, कैसे हालचाल हैं आप सभी के? मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग यू लव। क्या मैसेज करिए यार आपने, जोरदार तालियां यार, मजा आ गया आपके मैसेज को देखकर। चलो एक एक करके जरा शामिल करते हैं। हमारे साथ सुजीत सिंह भंडारी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। लिखते हैं, आनंद जी जय श्री राम, कैसे हाल चाल है? सो एंजॉइंग फुल योर शो एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग। अरे वाह क्या बात है। एंड मेरठ में जो ये गजक वाली अभी आपने प्रोग्राम सुनवाई, बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच जनाब। गुलाम चलानी पाशा जुड़े हैं मेरे साथ एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, हमारी ओर से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आकांक्षा कश्यप, सूरज कश्यप, गुड़िया कश्यप एंड बबली जी हमारे साथ पूरी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। ललिता कश्यप जुड़ी है मेरे साथ नवीन नगर से, लिखती हैं, आपकी आवाज और अंदाज दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं जी, गुड मॉर्निंग। एंड गर्म गर्म चाय पी रहे हैं, आप भी पीजिए, बिल्कुल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया। एंड ये लिखती हैं, जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम ही होगी, तो आप मत ही करो यार। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग, मेरे पास मैसेज आया है चौराहा गली से राजा कश्यप का, लिखते हैं, हाय हेलो, हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग रणवीर जी। मुझे लिखते हैं, आनंद जी आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही अच्छी लगती है, अभी हमने मेरठ की रबड़ी के बारे में सुना, बहुत मजा आया जानकर। अरे वाह क्या बात है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? सहारनपुर से जून रोजी पलविलीस जुड़े हैं हमारे रेगुलर लिसनर, लिखते हैं, समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की होती है। वाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जनाब। ये लिखते हैं आनंद भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग, स्टे ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ लव। एंड लिखते हैं, जिंदगी में सुकून उन रिश्तों में है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। मेरे भाई आजकल ऐसे रिश्ते मिलते गए हैं। हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, 8 से 9 बजे तक जो आप कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अलग अलग शहरों की जानकारी आप देते हैं, ये हमें बेहद ही पसंद आ रहा है। ये रहमतनगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जनाब। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्ते, सलाम जी, आपको भी सलाम, आपका शो सुनते ही मजा आ जाता है आरजी आनंद जी, आपकी बातें सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है और आपसे हमें मोहब्बत होने लगी। अरे अरे भाई साहब, भाभी जी बहुत मारेंगे आपको। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग यू लव, हमें भी आपसे बड़ी मोहब्बत है यार। जय श्री राम, हेलो जी, हेलो, जय बजरंग बली, आज बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं। दुर्गेश जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं भैया, हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं, मतलब छोटी सी पहेली पूछेंगे, आपके दिमाग का बत्ती गुल नीचे चालू करेंगे। उससे पहले मौसम की अपडेट भी आपको देने वाला हूं, यानी कि अभी एक कड़क अपडेट मौसम विभाग की तरफ से निकल कर आ गई है बॉस, ये हर दिन की अपडेट ना हमको रुलाए जा रही है सरकार। हाँ जी बाबू जी, जरा मेरा सवाल सुनो, ऐसी कौन सी चीज है आपको मेरे को बतानी है, कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं, जरा दिमाग लगा के बताओ। ऐसी कौन सी चीज है आपको मुझे बताना है, ऐसी कौन सी चीज है आपकी जो आपकी तो है ही लेकिन आपसे ज्यादा उसे कोई और इस्तेमाल करता है। अगर आपको पता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9837896896 पर। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सही दिमाग लगाओगे तो सही जवाब आपको मिल ही जाएगा, आप ढूंढ ही लोगे। आई एम श्योर आप बहुत ही टैलेंटेड हो, नो डाउट इस बात में, तो आपका दिमाग और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है यार, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आप जो है आंसर्स कर दोगे मुझे पता है। तो फटाफट से व्हाट्सएप करो मुझे जरा 9837896896 पर, बताओ मुझे जरा आज की मेरी इस पहेली का आंसर, कि ऐसी कौन सी चीज है बताइए जो आपकी है लेकिन आपसे ज्यादा दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मैसेज करना है आपने 9837896896 पर, ये स्टूडियो का नंबर है, व्हाट्सएप करके मुझे जरा बताओ फटाफट से। एंड अभी मैं आपको बताता हूं आज का एक बेहतरीन अपडेट जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। भैया आपको बता दें, यूपी के कई जिलों में कल मंडे को एक बार फिर से पारा 40 के नजदीक पाया गया, यानी कि मौसम ने करवट बदली है, रात में भी तापमान में काफी वृद्धि हुई। इनफैक्ट देश के जो है अलग अलग हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। 18 जून तक जो है मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल तापमान में वृद्धि बनी रह सकती है, यानी कि गर्मी का जो ये आलम है, जो माहौल है, वो हल्का फुल्का बना रहेगा 18 जून तक। 16 हो गई है ना आज। अच्छा, योगा डे को लेकर भी ढेर सारी बातें हो रही हैं और योगा डे को लेकर बहुत सारी प्रिपरेशन भी चल रही है अपने मुरादाबाद के अंदर। हमारे जो नए डीएम साहब है राजेंद्र पेंशिया जी, वो भी कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी कर ही रहे हैं। अभी क्या कुछ खास हुआ है डेफिनेटली आपको बताऊंगा, क्या चल रहा है योगा डे को लेकर, ये कड़क अपडेट पता लगेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल के लिए राइट हियर
जरा सी दिल में दे जगह तू। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन और खूबसूरत ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे मैं और आप एक साथ, है ना। चलो 3, 2, 1 एंजॉय एंड गो।

0: Thus Morning. Thus Morning.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

एक सुबह सुबह एक्सरसाइज आप करके आ रहे हो या एक्सरसाइज करने वैसे तो जान ही रहे होंगे लोग, ऑलमोस्ट 9:28 स्टेशन क्लॉक में वक्त हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जुम्बा योगा एक्सरसाइज करके घर की ओर लौट रहे होंगे। आई एम श्योर बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने का नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो मैं गाने ऐसे चला रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठे बैठे भी ना हल्का फुल्का कर सकते हैं यार, डांस हल्का फुल्का कर सकते हो, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, बट आराम से। हाँ, अगर आप अकेले ड्राइव करो तो आप कुछ मत करो, बस गानों का आनंद लो और सीधा अपनी जो नजरें हैं वो रोड पर रखो और अपने कानों को मेरे स्टेशन पे रखो।

क्या बात है यार, एक बेहतरीन गाना इस गाने के बाद। वेलकम बैक है वंस अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन है। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। आपको बता दें अपने मुरादाबाद में 15 जून से 21 जून तक जो है जिले भर में योग शिविर जागरूकता अभियान के और समूह के योग जो है मतलब योग से रिलेटेड बहुत सारे शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि आप योगा को लेकर जो है थोड़े से जागरूक बन सकें, थोड़े से अलर्ट हो सकें और अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं योगा को। वो कहते हैं ना, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, जिसकी बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं अपने मुरादाबाद शहर के अंदर। एंड भाई देखो, मैं तो डेली थोड़ी देर ही सही, अगर आप एटलीस्ट 10 मिनट भी योगा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इंटरनेशनल योगा डे पे पूरा विश्व योगा करता है, और अगर हम इसकी शुरुआत अब से ही कर देंगे तो कितना बढ़िया होगा ना। अगर अभी तक आपने योग नहीं अपनाया है तो प्लीज डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। मुरादाबाद में भी योग सप्ताह का शुभारंभ 21 जून तक जो है चल रहा है, बेसिकली ये 15 जून से 21 जून तक चल रहा है अपने मुरादाबाद में। एंड इसके अंदर भी जो है विशेष कार्यक्रम स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाना इतना जरूरी है, इसकी अपील की जा रही है। मुरादाबाद में आपको बता दें 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के तहत योग सप्ताह का जो है शुभारंभ हो गया है। ये 15 जून से यानी कल से शुरू हुआ है, 21 जून तक जो है चलने वाला है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में जो हमारे डीएम साहब राजेंद्र पेंशिया समेत अनेक अधिकारी जो है इसमें मौजूद रहेंगे, और तमाम सारी चीजें इसके अंदर जो है बताई जा रही है। देखिए, अगर आप योग करते हैं तो एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तनाव मुक्त जीवन होगा और आपकी दिनचर्या भी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो अगर आप योगा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं तो वेरी वेरी अमेजिंग। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी इस कैंपेन में जुड़ सकते हैं जो 15 जून से 21 जून तक चलने वाला है जिले भर के अंदर, जो योग शिविर जागरूकता अभियान जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हो गई है। सो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग इनिशिएटिव, एंड मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। और ये जो नई नई चीजें निकल के आ रही है ना अपने शहर के अंदर, जो हमारा यूथ है, जो हमारी जिंजी है, वो भी कहीं ना कहीं इनरोल हो रहे हैं इन सब चीजों में, तो ये सब देख के एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है चीजों को करने की, एंड मुझे लगता है कि आपका दिन का शुरुआत ही अच्छा और पॉजिटिव होता है तो यकीन मानिए पूरे दिन की जो प्रोडक्टिविटी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप भी डेफिनेटली इसमें जरूर इनरोल हो एंड डेफिनेटली आप भी योग को जरूर अपनाएं। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 9:34, आप है आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं एंड इसके आंसर्स भी आप लोग पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल एक परिवार एक पहचान योजना, जिसके अंतर्गत जो है

बहुत सारी चीजें चल रही है, मतलब फैमिली आईडी बनवाने को लेकर काफी सारे अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। तो अगर आप भी फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखिए अपने आसपास में कहीं कुछ ऐसा अगर चल रहा है तो आप भी जाके जरूर एक बारी पता करें और अपनी जो आवेदन इसमें आप जरूर कराएं, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। एंड देखिए कोई भी चीज अगर हमारे आसपास आती है तो हमारे और आपके लिए ही होती है, तो अगर आपने अभी तक फैमिली आईडी नहीं बनवाई है तो प्लीज जरूर बनवा लो यार। छोटी छोटी कड़क अपडेट जो आपको मिलती है लोकल फॉर वोकल की स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि यह है आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी है, फटाफट से ऐसे धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम जब लौट कर आएंगे तो आपकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेशल चीजें लेकर आए हूँ जिनको आप अपने डाइट में डेफिनेटली शामिल करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपकी हेल्थ भी चकाचक रहेगी, एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। आज वैसे वेजिटेबल का भी डे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही स्पेशल डे आज मनाया जाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं जरा सी देर में। और अभी लौट कर आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें जो आपको बताते रहेंगे इस चैनल पर, आपको कहीं नहीं जाना है। फिलहाल एक काम करते हैं, एक बढ़िया से गाना सुनते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब एक बढ़िया गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड आप मेरी पहेली का आंसर जरूर पहुंचाइएगा, मैंने आपसे पूछा है ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है बट आपसे ज्यादा उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, पता है आपको? व्हाट्सअप करो यार 9837896896 पर। ढेर सारे मैसेज पहुंच गए, श्वेता मेरे साथ जुड़ चुकी है, लिखती है हाय आनंद, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आपका वेलकम है, थैंक यू श्वेता जी। श्रेया भी जुड़ चुकी है मेरे साथ एंड प्रियंका का मैसेज आ रहा है, और साथ में हमारे साथ डॉली जी जुड़ चुकी है लाइन पार से, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

मैं आपको पूछता हूँ ना कि हाल चाल है सोनियो। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं क्या जी, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ विच? ओ जी वधिया ही चलना चाहिए। तुसी सुन रहे हो तुहाड़े शहर दा अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं क्या जी, कभी साडी गली विच भी आ जाया करो यार, अपनी गड्डी छड्डी लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त कितना हो रहा है यार, एक बार बता देता हूँ आपको, 9:44। और बात करते हैं अभी सुबह के नाश्ते की। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप 10 मिनट में ना ये फटाफट से हाई प्रोटीन वाले ब्रेकफास्ट जो है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आप एकदम से यू नो चाहते हैं कि आपको पूरा दिन फ्रेशनेस फील हो, तो आप ये मूंग स्प्राउट सलाद बना सकते हैं। जो अंकुरित मूंग होती है ना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया होती है आपकी हेल्थ के लिए। तो अंकुरित मूंग आपने लेनी है, उसके लिए आपने कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है, जैसे प्याज, टमाटर, खीरा और कुछ बेसिक से मसाले जो है इसमें डालकर आप एक हाई प्रोटीन सैलेड यू नो बना सकते हैं मॉर्निंग में। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। इसमें प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। ये आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी हो जाएगा अगर आप इसको लेते हैं तो। ये बहुत ही अल्टीमेट है आपकी हेल्थ के लिए। सुबह सुबह एक तो बढ़िया नाश्ता और लंबे समय तक आपको भूख भी नहीं लगेगी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। दूसरा है भैया, आप पनीर वेज सैंडविच जो है बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पनीर वेज सैंडविच एंड दिस इज वेरी अल्टीमेट सैंडविच, बहुत ही इमिडिएटली बन जाता है, बहुत सारा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही हेल्दी आपके लिए होता है। इसके लिए बस आपको पनीर, खीरा, टमाटो एंड हरी वेजिटेबल्स चाहिए और उसके बाद जो है आप घर पे ही एक बढ़िया सा टेस्टी सा सैंडविच रेडी कर सकते हैं एंड बहुत ही इमिडिएटली बन जाता है, क्विकली बन जाता है और बहुत ही बढ़िया आपकी हेल्थ के लिए रहता है। हाई प्रोटीन पेट भरने वाला, 10 मिनट में रेडी हो जाएगा ये आपका बढ़िया सा। एंड अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर दही चूड़ा ले सकते हैं, प्लस साथ में सत्तू आप ले सकते हैं। बहुत इमिडिएटली जो है ये आपको एक बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाएगा सुबह सुबह। अगर आप कुछ भी नहीं बना पा रहे तो आप जो है दही चूड़ा का इस्तेमाल कीजिए, आपके पेट को ठंडक देगा, लंबे समय तक आपको एनर्जी देगा और साथ में आप सत्तू वाला ड्रिंक ले सकते हैं या फिर घोल प्रोटीन में भी आप जो है इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहता है ये ड्रिंक घोल एंड इसमें प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं भरपूर मात्रा में जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। हाई प्रोटीन आपको मिलता है और गर्मियों के लिए एक बेहतरीन और बढ़िया ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है। जी हाँ, दही चूड़ा आप इस्तेमाल कीजिए अपने डाइट में, डेफिनेटली आपको बहुत ही अल्टीमेट लगे होंगे ये आज के छोटी छोटी चीज़ें आप अगर शामिल करेंगे तो। देखिए फिर आपका ब्रेकफास्ट कितना बढ़िया और बेहतरीन हो जाएगा बॉस। फिलहाल आप लोगों के मैसेजेस के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अल्टीमेट मैसेजेस आपने किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें भैया, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन यूके सरकार ने लिया एक बड़ा और अहम फैसला। जी हाँ, एक बार फिर से देखो, विदेशों में छोटे छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो रही है एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपको बता दें सोशल मीडिया बैन हुआ है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी ने जो है ब्रिटिश में वहां पर कल मंडे को 15 जून को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री और खुद छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो है मतलब वहां पर उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है और वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो 16 से प्लस के बच्चे नहीं है, मतलब जिनकी उम्र 16 साल से कम है, वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके लिए पूरी तरीके से निषेध यानी बैन कर दिया गया है एंड ये बहुत ही अल्टीमेट और मुझे लगता है कि ग्रेट इनिशिएटिव यार, आई थिंक बहुत ही बढ़िया। फिलहाल आपके इनिशिएटिव भी बहुत ही अच्छे होते हैं जो आप लोग हमारे साथ डेली शेयर करते हो, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। 9:47 हो गए यार, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे मैसेज किए हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया आपकी बातचीत सुन के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप करते हो, मतलब गजब की बातें यार। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा गाना आपका वेट कर रहा है, इसके बाद मैं एक कड़क क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और हाँ, आपने जो अभी मेरे को मैसेज किए थे उसके लिए थैंक यू वेरी मच यार, कसम से दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया आपके जवाब सुनकर। सबने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, जरूर आपके संदेश को शामिल करूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, बातें होती हैं दिल से दिल तक। सही जवाब के साथ जुड़े हैं भरत नागपाल जी मेरे साथ विजय ब्यूटी सेंटर से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम हो गया आपका, हाई गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है? बीबी राधिका जुड़े हैं राइट आंसर के साथ एंड टीना जुड़ चुकी है कुंदनपुर लाइन पार से मेरे साथ एकदम सही जवाब के साथ। राइट आंसर पहुंच गया रिहाना का मेरे पास। चमनलाल साहब भी जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश जी सही जवाब के साथ। नैनीताल से भावना भी जुड़ी है और भी ढेर सारे लिसनर जुड़े हैं। लौट के आता हूँ, फिर पढ़ूंगा आपके मैसेज।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: यार मुझे तो होश आ गया गाना सुन के। एक दीवाना था फ्रॉम द मूवी का ट्रैक, बहुत ही प्यारी फिल्म, फ्रॉम द फिल्म एक दीवाना था। होश आना, मुझे होश आ गया भाई गाना सुन के। वही गुड मॉर्निंग है, वेलकम बैक है, कैसे हाल चाल है आपके। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 स्टेशन, क्लॉक में वक्त हुआ है 9:58। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, ढेर सारे मैसेजेस के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे पास आया है एंड इनको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है, हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, कोलकाता से मैं मैसेज कर रहा हूं। माय नेम इज सुरेश कश्यप एंड माय वीवी नेम इज, इनकी वाइफ का नाम है नेहा कश्यप। ये लिखते हैं, आनंद जी हमारा ट्रांसफर कोलकाता में हो गया है बैंक मैनेजर के पद पर और हम आपका कार्यक्रम यहां पर सुन रहे हैं। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत बधाइयां, आप कोलकाता पहुंच गए हैं। मतलब केमन आछो दादा, अभी भालो आशी, अब तो आपको याद आएगा, थोड़ी बंगाली सीखो यार। एंड ऑल द वे बेस्ट कि आपका सिलेक्शन बैंक मैनेजर के पद पे हुआ है कोलकाता में, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, बहुत बहुत बधाइयां, ऑल द वे बेस्ट हमारी पूरी इंटायर फैमिली की ओर से। चलो जी, आपके मैसेजेस तो ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे पहुंच ही गए हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। मेरे पास मैसेज आया था नैनीताल से, इन्होंने लिखा है, हाय आरजी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, गुड वाली मॉर्निंग एंड हैव अ मैजिकल डे, ब्लेसिंग्स डे आरजी आनंद। लिखते हैं, छोटी सी दुआ आपके लिए है, आप देखो खुद को तो धरती की धूल बनते हुए फिर हनुमान जी चुनेंगे आपके माथे का चंदन, आपको बना लेंगे, जय श्री राम। कुछ समझ से बाहर थी मेरी ये लाइन, वेल थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइन। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, करूला से मेरे पास मैसेज आया है, हेलो सर कैसे हैं आप, आपका स्वीट नेम, अयो जी, ये शानू सैफी मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है व्हाट्सएप के थ्रू, हाय वेरी गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू डूइंग, आई एम गुड, आई एम गुड। मैसेज आ रहा है मेरे पास गीता कश्यप बबली अंजान के, लिखते हैं, हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, और आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका ये आंसर है, थैंक यू सो मच यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एक अलग क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, उसका जवाब आपने मेरे को व्हाट्सएप करके देना है। दिस इज वेरी अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारी फिल्म थी, इसमें जो है दो हीरो दो हीरोइन है, बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है, बस आपको बताना है ये फिल्म कौन सी, कौन सी फिल्म का डायलॉग प्ले कर रहा हूं।
1: बताइए किस किस्म की लड़की चाहते हैं आप?
2: वही जो शक्ल से खूबसूरत हो, दिमाग से इंटेलिजेंट हो और दिल की अच्छी हो।
1: इस महंगाई के जमाने में तीन तीन लड़कियां कैसे अफोर्ड कर सकेंगे आप, बताइए।
2: नहीं ये तीन तीन नहीं है, ये 3-in-1 है, जिसने जीता मेरा मन है, दिल की खरी है।
0: व्हाट्सएप करो मुझे जरा, ये वो परी है, कौन सी फिल्म का है ये डायलॉग, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए ये डायलॉग और बताइए कौन सी फिल्म से लिया है मैंने।
1: बताइए किस किस्म की लड़की चाहते हैं आप?
2: वही जो शक्ल से खूबसूरत हो, दिमाग से इंटेलिजेंट हो और दिल की अच्छी हो।
1: इस महंगाई के जमाने में तीन तीन लड़कियां कैसे अफोर्ड कर सकेंगे आप, बताइए।
2: नहीं ये तीन तीन नहीं है, ये 3-in-1 है, जिसने जीता मेरा मन है, दिल की खरी है, ये वो परी।
0: जरा बताओ मुझे कौन सी फिल्म का है डायलॉग, बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत ही कमाल की फिल्म है और बहुत ही बढ़िया मूवी है, गाने बहुत ही बढ़िया हैं इसके। एंड आपको क्या करना है, अब अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर। हम इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 10:02, आप आनंद के साथ, जल्दी से व्हाट्सएप कर देंगे आप। हाँ जी बहुत बढ़िया, सही है बाजी, लग जाओ काम पर, फटाफट से बताओ यार, बहुत ही अच्छा यू नो ये डायलॉग है, बहुत ही अच्छी फिल्म है यार, बताओ मुझे फटाफट से। स्टारिंग बाय सलमान खान एंड गोविंदा।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

बहुत ही अच्छा गाना है कनिका कपूर एंड मीट बिजनेस की आवाज। आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है, मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छा डायलॉग पूछा था और तमाम सारे मैसेज आ गए मेरे पास। लेकर आता हूँ एक लकी कॉलर को, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे. आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने किए, बहुत ही अच्छा गाना आप सुन रहे थे, चिटिया कलाइया. इनको अगर आप चाहते हैं चिटिया कलाइया मेंटेन रहे तो आप जब भी गाड़ी चलाएं अपने हाथों को कवर करके जाएं. मी ब्रदर्स अनजान एंड कनिका कपूर की आवाज में अभी आप एंजॉय कर रहे थे रॉय फिल्म का ये बेहतरीन गाना. और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जी, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग. 10:10 हो गए स्टेशन क्लॉक में. ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं, जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी. सब लोगों ने बहुत ही अच्छे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच. आज हमने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया था कि बताइए कौन सी फिल्म का डायलॉग है.
1: किस किस्म की लड़की चाहते हैं आप?
2: वही जो शक्ल से खूबसूरत हो, दिमाग से इंटेलिजेंट हो और दिल की अच्छी हो.
1: इस महंगाई के जमाने में तीन तीन लड़कियां कैसे अफोर्ड कर सकेंगे आप बताइए?
2: नहीं ये तीन तीन नहीं है, ये 3-in-1 है. जिसने जीता मेरा मन है, दिल की खरी है, ये वो परी है.
0: Yes, इसमें सलमान खान जी जो है वो लव गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग मूवी स्टारिंग बाय सलमान खान, कटरीना कैफ, गोविंदा एंड लारा दत्ता. बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी. एंड ऑफ कोर्स इसका नाम बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है सही वाला, बट कोई एक लकी कॉलर होता है. तो आज सुप्रिया जी ने सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां इनके लिए. एंड साथ में बनारस से मोहसिन जी ने एकदम सही जवाब दिया था. इन दो लोगों ने सबसे पहले इमीडिएटली एंड क्विकली आंसर पहुंचाया. एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर फ्रॉम द मूवी पार्टनर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी. बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोग करते हैं और इतनी धाकड़ तरीके से आप फिल्मों को पकड़ते हैं ना, बड़ा मजा आता है भाई. थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही जो है अपनी मोहब्बत और अपना जो ये प्यार है, जो ये बेशुमार मोहब्बत है, ऐसे ही बस बनाए रखो यार. फिलहाल थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए. और ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हाई गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, गुड मॉर्निंग. एंड एक मैसेज मेरे पास आ गया है, हाय आनंद, हाउ आर यू डूइंग? आपके शो में बहुत मजे आते हैं मेरे को एंड आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं. थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट. अब आगे बढ़ने का टाइम हो गया है, बिकॉज जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे. 10:12 हो गए स्टेशन क्लॉक में, हम जा रहे हैं भैया. सुनो ना संग, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? राधिका जी मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच सही जवाब देने के लिए. बबली जी ने सही जवाब दिया था, साथ में गीता कश्यप. मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शैयद शारिकली जी जुड़े हैं, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बेहद ही पसंद आ रहा है. एंड रणवीर सिंह जी ने सही जवाब दिया था. साथ में मेरे पास मैसेज आया था अलका वर्मा जी का बुद्धि बिहार से, इन्होंने भी एकदम बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था. एंड साथ में एक वॉइस नोट भी किया था.
3: राधे राधे राधे, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सारे सुनने वाले श्रोताओं को.
0: जी जी बिल्कुल.
3: आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि नाम तो मेरा है पर इस्तेमाल कोई और करता है, वो चीज है नाम.
0: अरे वाह, आपने तो भैया हमारे सवाल में हमारा जवाब दे दिया. आपको भी बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं. जय श्री राम. हेलो, जय श्री राम. गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. टीचर कॉलोनी से मेरे पास एक मैसेज पहुंच गया है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग. एंड समीर अब्बासी जी सही जवाब के साथ जुड़े हैं. गुड मॉर्निंग हमारे पास पहुंच रहा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग. लक्ष्मी जी आपका जवाब गलत हो गया है, नसीब फिल्म का नहीं, ये पार्टनर फिल्म का डायलॉग था. करूला से हमारे साथ जुड़े हैं सानू सैफी जी, गुड मॉर्निंग सानू जी. एंड हमारे पास सही जवाब पार्टनर का ये पहुंचा रहे हैं फिरोज जी, हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह. साथ में हमारे पास मैसेज आ रहा है नॉनेश कुमार का, हाय गुड मॉर्निंग, सही जवाब के साथ जुड़ गए हैं. रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से जुड़े हैं सही जवाब के साथ. हेलो आनंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? हमारे घर में ऑलवेज ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग ये रहता है और साथ में हम लोग आपको सुनते हैं और दही चूड़ा हम हमेशा खाते रहते हैं, हमारे घर में अवेलेबल है, हम बहुत अच्छे से खाते हैं. लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ दही चूड़ा कितना टेस्टी और कितना यमी होता है. थैंक यू. कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे गाइज, फटाफट मैं पढ़ के निकलूंगा क्योंकि समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है. 10:14 हो गए स्टेशन क्लॉक में. नेहा स्वाति जुड़ गई हैं मेरे साथ टेक्स्ट मैसेज के जरिए, लिखती हैं आपका शो बहुत अच्छा लगता है आनंद. हेलो आनंद जी नमस्ते, कैसे हालचाल है? हाय माय नेम इज नेहा एंड आप आनंद भैया बहुत ही बढ़िया बातें करते हैं, गाने बहुत ही अच्छे चला रहे हैं और आज तो कुछ खास ही कर दिया है भैया, मतलब मजा आ गया है. ये लिखते हैं कि आप हमें फोन नहीं करते हैं, देखिए हम व्हाट्सएप तो नहीं कर पाते हैं बट हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं. थैंक यू नेहा जी, नेक्स्ट टर्न आपकी भी होगी, बस सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन. हाय गुड मॉर्निंग कार्तिक, हाउ आर यू? कार्तिक लिखते हैं हाय आनंद गुड मॉर्निंग, आपकी पहली का आंसर है नाम, एब्सोल्युटली सही जवाब यार. एक मैसेज और आ गया, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है? माय नेम इज ऋषि कपूर, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एवरीबॉडी। फिलहाल कल सुबह फिर मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, नई वाइब, नए गाने, नए एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, खूब सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही झकास रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी आपसे मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल खुशी आ गई, उसका वार्म वेलकम करेंगे आप, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड फैबुलस मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओं, वक्त हुआ है 10:25। 16 जून की तारीख है और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है ट्यूजडे का। जी हाँ, मंगलवार का दिन है। और कहते हैं ना दोस्तों कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन संकट मोचन से बड़ा कभी नहीं होता। जब मन में विश्वास, चेहरे पर मुस्कान और प्रभु का आशीर्वाद साथ हो, तो हर मुश्किलें भी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती हैं। इसीलिए आज का दिन एक भरोसे के साथ शुरू कीजिए, हिम्मत बनाए रखिए और सकारात्मक सोच। और याद रखिए दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। इसी विश्वास और मुस्कान के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, लेकर आई हूँ आपके लिए मॉर्निंग मसाला शो। एंड बहुत सारी गपशप आज हम करने वाले हैं। बहुत सारी बातों के साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथियों, बहुत कुछ स्पेशल आज होने वाला है। क्या कुछ खास है सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। आप भी मेरे साथ इस बेहतरीन शो में कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं और अपने ब्यूटीफुल संदेश भी पहुंचा सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बहुत सारे श्रोताओं को तो एफएम का नंबर याद हो चुका है और वो आंख बंद कर भी नंबर डायल कर सकते हैं। और कुछ श्रोता अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं जिनको नहीं मालूम है नंबर, तो हमने आपको बता दिया है। अगेन मैं बता देती हूँ, 9837896896। इस नंबर पर आप अपना मैसेज पहुँचा सकती हैं आज की मॉर्निंग। और मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से। देखिए, हम कहीं भी जाएं एंड कुछ नई ड्रेस पहनते हैं या फिर ऐसे ही जब तैयार होते हैं, तो फिर मन करते हैं ना कि सेल्फी ले लेते हैं। चलिए आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, चलो एक फ़ोटो ले ही लेते हैं, एक सेल्फी ले ही लेते हैं। कहीं पार्टी में जाना हो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तभी हम सेल्फी लेते हैं ना। तो मैंने सोचा चलिए, सेल्फी की बात हो ही रही है तो सेल्फी वाला गाना भी होना चाहिए ना। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से। तो सुनते हैं इस गीत को, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप अपने मैसेज पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चाहे आप नाश्ता कर रहे हो या फिर आप अभी घर में काम कर आराम से बैठे हो, तो अपना संदेश पहुंचा दीजिएगा। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये गाना आपका इंतज़ार कर रहा है, तो सुनिएगा इसको।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी आरजे खुशी, लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना जिस सिंगर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, और गाने की लिरिक्स बड़े ही खूबसूरत है, लाइक मैं कुड़ी होके इन्हें नखरे नहीं कर दी जिन्हें मुंडा होके कर दावे तू बे एक्चुअली। लेकिन पता है दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा नखरे तो हमारे सूर्यदेव जी कर रहे हैं। सुबह से ही ऐसे नाराजगी दिखा रहे हैं कि बाहर निकलते ही लगता है जैसे फ्री में तंदूर की सर्विस मिल रही हो। इसलिए पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमारे साथ मस्ती का तापमान बढ़ाइए, मौसम का नहीं। ओके,

दोस्तों आप अपना ख्याल रखो, हम यही आपसे बार बार निवेदन करते हैं। एंड अगर आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो छाता लगाकर ही जाएं और पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। एंड बीच बीच में पानी पीते रहें, प्यास लगे तो भी, नहीं लगे तो भी पानी पीते रहिए। आप उस पानी का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लाइक इसमें आप थोड़ा पुदीना पत्ती ऐड कर सकते हैं, पुदीना की, एंड उसमें आप लेमन की स्लाइस ऐड कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे एंड आप वो ऐड कर सकते हैं ताकि पानी का जो फ्लेवर है वो चेंज लगे एंड आप पानी भी उसको पी पाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं कुछ लोग, तो आप ऐसे यू नो फ्लेवर चेंज कर आप उसमें कुछ और एड ऑन कर सकते हैं ताकि पानी आपके लिए और हेल्दी हो जाए एंड टेस्टी भी लगे। दोस्तों वक्त हुआ है 10:38 और आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर। दोस्तों आज 16 जून है और आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर मेहनत करते हैं और अपनी इनकम का हिस्सा अपने अपनों को भेजते हैं। ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता बल्कि इसमें छिपा होता है प्यार, जिम्मेदारी, अपनापन और परिवार के बेहतर भविष्य का सपना। कई बेटी बेटियां, भाई बहन, पति पत्नी या माता पिता अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके अपनों की ज़िंदगी आसान और खुशहाल बन सके। उनके भेजी हुई जो इनकम के साथ ढेर सारी दुआएं, उम्मीदें और प्यार भी घर तक पहुंचता है। और दोस्तों दूरी चाहे कितनी भी हो लेकिन अपने के लिए ना किया गया हर प्रयास रिश्तों को और मजबूत बना देता है। जो अपने परिवार की मुस्कान के लिए दूर रहकर मेहनत करते हैं वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उम्मीद, भरोसा और ढेर सारा प्यार घर भेजते हैं। उन सभी श्रोताओं को जो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हम उन लोगों को दिल से सलाम करते हैं जिनकी मेहनत ने न जाने कितने घरों में खुशियां और सपने रोशन, उनकी मेहनत की वजह से न जाने कितने घरों में सपने पूरे होते हैं, खुशहाली की रोशनी आती है घर में। और दोस्तों मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, आज की सुबह जब इतना बेहतरीन दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी या काम की वजह से आपसे दूर रहते हैं, उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है। जी हाँ, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई अगर बाहर रहते हैं नौकरी के लिए, काम की वजह से, स्टडी की वजह से, आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। फटाफट से जल्दी से अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा, नंबर 9837896896 है, इस नंबर पर आप अपना मैसेज हमें पहुंचाएगा। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया हुआ है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी का, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद एंड बेबी चाहत का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। और ये कहते हैं, आरजे जी आप हमारा आदाब कबूल कीजिएगा। एग्जैक्टली सो, हमने आपका आदाब कबूल किया, इतने प्यार से आप हमें भेजते हैं तो हम कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका जो प्यारा सा ये गुड मॉर्निंग है, आदाब है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये अपना संदेश पहुँचाते हैं रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं इरशाद अंसारी जी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है ये, हाँ
कश्मीर से मैसेज हमारे पास पहुंचा है महाजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं आरजे जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज बिना किसी देरी के पहुंचा सकते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं और सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसकी बात करेंगे आपसे और ढेर सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और हाँ, मैंने आपसे जानना चाहा है जो आपकी फैमिली मेंबर्स में चाहे वो ब्रदर हो, पापा हो, या फिर सिस्टर हो या मदर हो, जो घर से बाहर रहते हैं, दूर स्टडी की वजह से, जॉब की वजह से, कोई ना कोई रीज़न होता है जब फैमिली दूर होती है अपनों से, तो कौन सी उनकी एक ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ज़रा हमें बताइएगा दोस्तों। हम भी जानना चाहते हैं आपकी दिल की बातें। और अमेजिंग ट्रैक एक आप सभी के लिए, यहाँ पर आप सुनिएगा कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं लौट कर आती हूँ।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, मैंने आपसे आज की सुबह एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। मैंने आपसे मालूम किया है दोस्तों कि आपके परिवार का कोई सदस्य जब नौकरी या काम की वजह से आपसे दूर रहते हैं, चाहे वो आपके ब्रदर हो एंड आपकी सिस्टर हो, फादर हो, मदर हो, या फिर आपकी सन हो, आपकी डॉटर हो, तो उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है। और हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे संदेश आए हैं हमारे श्रोताओं के, तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। और वक्त हुआ है 10:52। और हमारे पास यहाँ पर संदेश आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है टीचर कॉलोनी जयंती और मुरादाबाद से समीर अब्बासी, साथ में जाहिर हुसैन अब्बासी जी भी हैं, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी, और ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं कार्ट रोड लदावली से। और हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा स्वीट सा वॉइस नोट आया है, तो मैं उसको इमीडिएटली प्ले करती हूँ यहाँ पर कि क्या पहुँचाया है मैम ने, ज़रा सुन लेते हैं उनकी प्यारी सी बातें उनकी आवाज़ में। श्रोताओं, आप भी अपने वॉइस नोट हमें पहुँचा सकते हैं बिना किसी देरी के।
1: राधे राधे खुशी।
0: राधे राधे, मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: मैं अलका वर्मा बुद्धि बिहार से, मैं तो बढ़िया हूँ खुशी। आपको तो मालूम ही है कि छोटा बेटा मेरे जापान में है, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। जब खास तौर पे जब मैं खाने कुछ बैठती हूँ तो उसकी तुरंत याद आ जाती है कि वो बेटा मेरा क्या खा रहा होगा, कैसे रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड की बहुत प्रॉब्लम है। बस मैं जब भी खाती हूँ समझ लो आँखों में आंसू आ जाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगी।
0: मैम, मैं बिलीव करूंगी क्योंकि मैं भी खुद फैमिली से दूर रहती हूँ, और जब हम भी कुछ खाते हैं, कोई लाइक कुछ भी, मतलब कहीं घूमने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो तुरंत हमें मम्मा पापा की याद आती है। और मम्मा भी जब कुछ खाती हैं तो वो तुरंत हमें कॉल करती हैं, कहती हैं मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही खूबसूरत होता है, और लाइक बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली भी मिस करती है और हम भी बहुत ज़्यादा। मम्मा का नाइट में कॉल आया और वो इन्हों डिनर कर रही थी और कह रही थी कि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप सब मेरे साथ नहीं हो, और अकेले अगर खाते भी है ना तो खाने का मन नहीं करता है। लाइक खाना खाते हैं लेकिन वो फीलिंग्स, वो हैप्पीनेस नहीं होती है जो बच्चों के साथ में होती है, एंड सेम पिंच हमारे साथ भी यही होता है। तो हमने अभी डिसाइड किया है कि अब अपने पेरेंट्स को हम यहीं पर लेकर आएंगे और सब लोग साथ रहेंगे, क्योंकि वो वहां पर रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, तो ना उनका दिल लगता है और ना ही हमारा लगता है। और मम्मी पापा का प्यार बहुत स्पेशल होता है। और मम्मी का प्यार तो सबसे अलग होता है, लाइक वर्ल्ड में कोई ऐसा प्यार कर ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच अलका मैम, आपने इतना स्वीट वॉइस नोट हमें पहुंचाया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है रिहाना जी का, रानी नांगल से, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, मैडम जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने हमें कोई नींबू की लाइक कुछ फोटो क्लिक करके भेजी है, और ये नींबू तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है सर। उमर शंकर सिंह जी का मैसेज हमारे पास आया है रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, और ये एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू हमें चीज़ें भेजते रहते हैं, कभी कोई फ्लावर्स, कभी फ्रूट्स, एंड आज उन्होंने नींबू भी भेज दिए हैं। भाई देखिए, गर्मी में ना नींबू पानी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमें तुरंत एनर्जी भी देता है, तो आप भी नींबू पानी पीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, कोलकाता फ्रॉम सुरेश कश्यप, एंड इनके मैसेज हैं नेहा कश्यप जी। खुशी जी, हमारा ट्रांसफ़र कोलकाता में हुआ है बैंक मैनेजर के पद पर, और हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयां सर, थैंक यू सो मच, आप कोलकाता में हमारा शो सुन रहे हैं। वैसे वहाँ पर जो बंगाली लैंग्वेज होती है ना, बड़ी स्वीट होती है, जैसे वहाँ का रसगुल्ला बहुत मीठा होता है ना, वैसी लैंग्वेज भी बहुत मीठी होती है, और अच्छा है कोलकाता भी। एक दो शब्द हमें भी कोलकाता के बंगाली आती है, थोड़ा थोड़ा लिटिल बीट हम कोशिश करते हैं सीखने की। जैसे वहाँ पर बोलते हैं तुम्हें केमन आछो, अमे भाले ओ आछी, की करछो तुम्ही, अमी शो करी छू, मतलब इस तरह से कुछ लिरिक्स हैं, थोड़ा मेरा मिस्टेक हो रहा है, बट बंगाली लैंग्वेज बहुत प्यारी है। हर भाषा में एक प्यार छिपा होता है और हर भाषा बहुत ही प्यारी होती है, अपनापन होता है। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। जय श्री राम खुशी मैम, जय श्री राम आपको भी, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गी सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से, और इन्होंने भी कुछ गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। तो चलिए दोस्तों, एक ट्रैक मैं यहाँ पर आपको सुनवाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग गाना है, फाल्गुनी पाठक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में ट्रैक मैं आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ, आप एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ थोड़ी सी देर में, आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, और हाँ अपने मैसेज भी पहुँचाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना। नकाश अजीज की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं किसकी फैन हूँ, तो मेरा जवाब होगा मैं अपने प्यारे श्रोताओं की फैन हूँ। आपके प्यारे प्यारे मैसेज, आपकी प्यारी बातें और आपका अपनापन, यही तो इस सफर को इतना खूबसूरत बनाता है। जब आप दिल से जुड़ते हैं तो सच मानिए, मैं भी आपकी फैन हो जाती हूँ। और बस आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका साथ हमें चाहिए। और जब आप सब प्यार से मुस्कुराकर कार्यक्रम को सुनते हैं ना, तो खुशी को बहुत खुशी होती है। और साथियों, समय हुआ है 11:08।

और दोस्तों आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा के उस शानदार कलाकार का जिन्होंने अपने दम पर अभिनय, अनोखी डांस स्टाइल और शानदार व्यक्तित्व से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी का जो जन्मदिन है और हमारी ओर से सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपने फिल्मी सफर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं। उनकी फिल्में डिस्को डांस ने उन्हें दी देश ही नहीं दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। उनकी सादगी, मेहनत और संघर्ष की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और भावनात्मक हर तरह के किरदारों में अपनी अलग छाप छोड़ी है। कई दशकों से भी भारतीय सिनेमा का एक मजबूत और सम्मानित चेहरा बना हुआ है। एंड दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं कि वे स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आने वाले वर्षों में भी अपने अनुभव और प्रतिभा से हम सभी का मनोरंजन करते रहें। हैप्पी बर्थडे मिथुन दा। एंड दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको मिथुन जी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, बताइएगा और उन्हीं की मूवी का उन्हीं पर फरमाया गया कुछ ट्रैक अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज पहुंचाएगा। नंबर 9837896896। जल्दी से बताइएगा आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी एक्टर्स के साथ वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, उनकी जोड़ी ज़्यादा जमती है, आप मुझे बताइए। क्योंकि सबकी चॉइस अलग है और यूनिक है तो मैं जानना चाहती हूँ। और यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पलवली जी का और सर हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम रेगुलर सुनते हैं, बेहद पसंद आता है। इस शो के माध्यम से मनोरंजन तो होता ही है लेकिन बहुत सी जानकारियाँ भी हमें मिलती हैं। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है किशोर जी की आवाज़ में, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, बहुत प्यारा ट्रैक है। तो श्रोताओं सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को और लौट कर आएंगे हम। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक खूबसूरत सा ट्रैक मैंने भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है अलका याग्निक जी साथ में उदित नारायण जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में, मिथुन जी पर फिल्माया गया ट्रैक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा, तो सुनिएगा बिना किसी देरी के इस प्यारे से गीत को। बस मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है और आप सभी का फेवरेट शो लेकर हाजिर है. जी हाँ, मॉर्निंग मसाला, जहां पर आप एवरी डे कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं एंड बहुत सारे एंटरटेनमेंट तो होता ही है लेकिन नई नई जानकारियाँ भी आपको मिलती हैं. और दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आज मिथुन चक्रवर्ती जी का बर्थडे है और उन्हीं का कोई ट्रैक या कोई मूवी जो आपको बहुत पसंद है तो आप मुझे बताइएगा एंड मैं यहाँ पर वो सॉन्ग प्ले करूँगी एंड आपको बताइएगा कि उनको उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी फेवरेट है जो आपने देखी है और आपको उस फिल्म से प्रेरणा मिली है, कुछ आपने सीखा है, क्योंकि हर कलाकार कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है. और मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है एंड जो हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाता है. देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है. कहते हैं ना कि हम एक इंसान से सब कुछ नहीं सीख सकते लेकिन हर इंसान से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं. तो आप मुझे बताइएगा कि उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. बिना किसी देरी के आप मुझे संदेश पहुंचा सकते हैं, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896. और यहाँ पर तोहफा तो मैं आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ लेकिन हाँ, प्यारे प्यारे जो गाने आपने यहाँ पर भेजे हैं वो मैं प्ले करके आपको खूबसूरत सा तोहफा दे सकती हूँ. एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का और ये कहते हैं, नींद नहीं आती रातों को, चैन नहीं आता दिन में, मैंने पूछा ईश्वर से कि क्या यही प्यार है आपका, ईश्वर ने कहा नहीं बेटा, गर्मी है, सबका यही हाल है. अरे वाह, क्या बात है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग. ये मैसेज हमारे पास निखत फातिमा जी का आया है और कहती हैं, दी मेरे दो ब्रदर 19 जून को सऊदी अरब. अच्छा, ओके, मक्का मदीना जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से भी बहुत बहुत मुबारक है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग. ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं ग्राम गोविंदपुर से. इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है बट गुड मॉर्निंग हमें पहुंचा दिया है, शुक्रिया. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से. कहती हैं, नेहा कश्यप जी को कोलकाता में बैंक मैनेजर बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं. और कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन. और इन्होंने लिखा है कि मैम, आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली मुरादाबाद में शिफ्ट हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच मैम. ये तो आपका प्यार है एंड इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है और इन्होंने कुछ और भी लिखा है. कहते हैं कि मैम, मुझे आपको मैसेज करना बहुत अच्छा लगता है. अरे वाह, और कहती हैं कि आज मिथुन दादा का बर्थडे है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हीं की फिल्म का कोई भी ट्रैक आप प्ले कर दीजिएगा. श्योर मैम. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आपको हमारी तरफ से, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, लाइन पार से आकांक्षा कश्यप, सूरज कश्यप, गुड़िया कश्यप, बबली कश्यप और कश्यप परिवार की ओर से गुड मॉर्निंग विशेष की हमें भेजा है. इतने प्यार से इतने सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग विश किया है, थैंक यू. चलिए दोस्तों, अभी आपसे और गुफ्तगू करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम आ गया हो गया है तो एड ब्रेक के बाद कुछ म्यूजिकल ब्रेक और कुछ और अपडेट्स हमारे पास हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ. बस आप बने रहिए, चिपके रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है, मुस्कुराइएगा आप और हाँ, पानी पीते रहिए. देखिए, मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे श्रोता थोड़ा सा भी मिस करें पानी पीना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपका फिट रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है. ओके, चलिएगा अभी सुनिए कुछ एड ब्रेक, उसके बाद म्यूजिकल ब्रेक.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
5: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
4: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: तो लेली नहीं मांगता, हम तो मैरी नहीं मांगता, हम तो सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: Thank you, baby. Thank you.
1: हमको जाने नहीं मांगता, हमको पीछे नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता।
0: ये तो कौन मांगता?
1: जॉनी, जॉनी, चुली का देव तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

से स्वागत करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी बहुत सारे श्रोता ऑन द वे कार में हैं, जो अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, एंड चाहे ऑफिस हो या फिर कहीं घूमने का भी प्लान कर रहे हो या फिर किसी काम से आप अगर ऑन द वे कार में जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड प्यारी से स्माइल अपने चेहरे पर हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं।

और अभी आपने प्यारा सा अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी जीते हैं शान से। मिथुन दास साथ में मंदाकिनी जी की पूरी फिल्माया गया ट्रैक बहुत ही प्यारा सा। अनु मलिक साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में ये ट्रैक सुना आपने। और दोस्तों आज की एक अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपके पैन कार्ड पर लगी फोटो पुरानी हो गई है या आपके सिग्नेचर बदल गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे ही अपने पैन कार्ड की फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाएगा, यानी नया पैन कार्ड नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी जानकारी अपडेट होगी। ध्यान रहे दोस्तों, पैन कार्ड बैंकिंग इनकम टैक्स रिटर्न निवेश और कई जरूरी वित्तीय कामों के लिए एक अहम दस्तावेज है। इसलिए अगर आपके पैन कार्ड में फोटो या सिग्नेचर अपडेट कराने की जरूरत है तो इसे समय रहते ही जरूर करवा लीजिएगा। छोटी सी अपडेट लेकिन बड़े काम की बात है। ऐसे ही काम की जानकारी और आपके पसंदीदा गानों के साथ जुड़े रहिए आपकी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी, अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला मुरादाबाद ग्राम दूला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का, और ये कहते हैं, खुशी जी आपने हमारा संदेश शामिल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है काशी बनारस से मोहसिन अंसारी जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, कहते हैं मैम हम आपका कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास पूजा जी का आया है विकास नगर से, और ये कहती हैं हाय मैम कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये कहते हैं कि खुशी जी जब आप आती है ना तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती हैं हमारे लिए, एक से बढ़कर एक ट्रैक एंड बहुत सारी जानकारियाँ आप हमें देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच, आपका प्यार ही तो हमें चाहिए। चलिए मैं एक प्यारा सा ट्रैक अभी आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ। तब तक आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए सबसे अनमोल अगर कोई चीज़ है ना तो वो है हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम हर चीज़ अच्छे से कर पाएंगे ना, तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पानी पीते रहिए, और हाँ पानी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपने जब आप घर से निकले हैं तो आपने कुछ नहीं खाया है तो प्लीज़ आप फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, कुछ आप ले सकते हैं ताकि आपको वीकनेस फील ना हो और आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएं, ठीक है? चलो अभी एक अमेजिंग ट्रैक मैंने यहाँ पर प्ले किया है, आप इसको एंजॉय कीजिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, यहाँ पर समय हुआ है 11:51। मुझे पता है कि आप किचन में अभी खाना बना रही हैं और कुछ खाना बनाने की तैयारियाँ भी कर रही हैं। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बीच बीच में ब्रेक ले लीजिएगा। क्योंकि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब कोई खाना बनाने को कह देता है ना, तो बस पूछिए मत, ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया है। हाँ, लेकिन करना पड़ता है, जिम्मेदारियां हैं सभी के लिए।

दोस्तों, जब इरादे बड़े हों तो एक छोटा सा गांव पूरे देश की पहचान बन सकता है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है सहारनपुर के चकवाली गांव ने। जी हाँ, यहाँ एक अनोखा सरोवर बनाया गया है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि इसका आकार भारत के नक्शे जैसा है। इस खूबसूरत सरोवर का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस भारत सरोवर। एंड जो जगह कभी ड्रिपिंग ग्राउंड हुआ करती थी, आज वही हरियाली, सुंदर फुटपाथ, ओपन जिम बच्चों के लिए खोलने की जगह और आकर्षण पर्यटन स्थल में बदल चुकी है। गांव का प्रवेश द्वार भी तिरंगे की थीम पर बनाया गया है, जो देश भक्ति का एहसास कराता है। इस पहल ने ना सिर्फ गांव की खूबसूरती बढ़ाई है, बल्कि उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण विकास को भी नई पहचान मिलेगी। और दोस्तों, सच कहा जाए तो जब सोच नई हो और इरादे मजबूत हो तो गांव भी देश के लिए मिसाल बन जाता है। और हमारे पास यहाँ पर जो मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गुजरात से मधुभाई चौहान जी का, और ये कहते हैं, आरजे खुशी जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। अमरोहा से मैसेज आया है नेहा कुरैशी जी का, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें भी लिखी हैं कि होती नहीं मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है, सूरत उनकी खुद ही प्यारी लगने लगती है, कदर जिनके दिल में होती है। नमस्ते खुशी मैम, क्या हाल है आपकी? अरे वाह, मैं बहुत अच्छी हूँ नेहा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज पहुँचाया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मैसेज मिला है जयंतीपुर, करूला जयंतीपुर से जाहिर हुसैन जी का, और गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, हमारे हालचाल मालूम किए हैं तो बताते हैं हम आपको, हम ठीक हैं। और जब आप सब संदेश पहुँचाते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी लौट कर आते हैं खूबसूरत से गीत के उस पार। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि छोटे छोटे जब हम पौधे लगाते हैं तो उससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और पॉजिटिव

0: अमेजिंग ट्रैक दोस्तों, अभी आपने एंजॉय किया है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल को हमेशा खुश रखिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हर दिन खुशियों से भर जाएगा। फिर मैं मिलूंगी आपको नई बातों के साथ, नए गानों के साथ, ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, यूं ही मुस्कुराते रहा कीजिए। बाय बाय।
1: रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani.
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
7: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
6: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: TNC अप्लाई।

0: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे सिहतिया सिंह जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे खुशी, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया, उन्होंने कहा अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे, वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया

0: थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गाँव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
0: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है, पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए, तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
1: क्या सियतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है।

0: तो अच्छी खबर है आरजे खुशी जी। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
0: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आम तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो?
0: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
0: यही तो सबसे अहम बात है आरजे खुशी। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
0: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वही हारेंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखिए आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत
0: है? यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा, यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं हो।

0: वगैरह वगैरह, इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती। कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो, समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ,
0: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
1: तो चलिए जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत है? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों

0: में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
1: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
0: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है, कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है, इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस, मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है।
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताया डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
0: देखिए, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझिए ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CHC PHC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट NGO से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCHUP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
5: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट NGO का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
5: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
5: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन A का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
5: देखिए गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो टीडी टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
5: देखिए इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है और उस खून जितना ही बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है वो बच्चों में आती है तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में जो हमने शुरू में जिक्र किया उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
5: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
5: देखिए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है यानी उपकेंद्र है जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती है और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं चूंकि हम जानते हैं और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
5: देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है।

0: कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था। सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है। और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है। और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं। और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट NGO का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरा आखिरी संदेश ये है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
1: हेलो आनंद, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
0: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसे लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट?
1: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
0: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का सच है और बिल्कुल सही है क्या सही में मोबाइल
6: बैठी है सास बैठी है ससुर बैठे हैं या मम्मी बैठी है
5: दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो दोस्तों आज हर हाथ में मोबाइल है लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी
6: कुमकुम आप सभी की प्यारी दोस्त
5: जी तो कुमकुम बताओ जरा अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं उसका रीजन मोबाइल ही है क्या
6: हाँ जी राइट हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है सास बैठी है ससुर बैठे हैं या मम्मी बैठी है पापा बैठे हैं भाई बहन बैठे हैं लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं जिससे लोग देखते हैं कि हाँ एक साथ होने के बाद भी एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं
5: बिल्कुल दोस्तों सही कहा कुमकुम जी ने और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल मोबाइल जब से आया है ना बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी जो अपनेपन का एक एहसास था वो भी कम हुआ है और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल की आने की वजह से क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो जी हाँ श्रोताओं आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी स्टोरी एक परिवार था मम्मी खाना बना रही थी पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी दादी ने कहा अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे हंसी मजाक हुआ पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है जी हाँ श्रोताओं तो ये कहानी नहीं है दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर साथियों आप क्या सोचते हैं इन बातों से आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से श्रोताओं आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जुड़े रहिए टिके रहिए सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
0: वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और ये आने से चीज़ें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारे यूज़ के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
3: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीज़ें डिजिटली प्लान्ड हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज़, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने

0: परिवार के साथ एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूँ अगर आप देख भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ों पर आप बात कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल ना मोबाइल के आने से एक चीज़ तो है यार जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज़ लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाज़ें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फ़ोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाए एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
1: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया। हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
1: और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झाकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं ना कहीं, है ना?
1: तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगी, मतलब क्या करना चाहोगी?
1: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता है, सबको दिल्ली, मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूँ लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज़ नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज़ नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में, ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फैमिली को, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो। मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज, फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफ कोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है।
0: Correct.
1: तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम, एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील्स सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनते ही हम तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज़ निकलती है अभी बिजी हूँ बाद में आऊँगा। ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फ़ोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं। थोड़ी सी देर में बात हुई, उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी, अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ यार एक समय सीमा बना लो हर चीज़ की। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना। क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने? हाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाज़त, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम?
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: आजा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
0: कॉल 8826213131।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
7: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
6: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43981/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
8: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
9: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
8: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
10: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
11: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं आरजी आनंद।
12: हेलो प्राची, हाउ आर यू?
11: मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप बताइए, आप?
12: मैं अच्छा हूँ। आज तुम मुझे कौन से प्रोग्राम में लेकर आ गई हो? ये
11: आज मैं आपको लेकर आई हूँ महिला मंच, हमारा जो प्रोग्राम है और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें।
12: अरे वाह, महिला मंच में पुरुष मंच भी खोल दिया आज आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेल फीमेल सब बराबर है और सबको सबके प्लेटफॉर्म पे जाने का राइट है।
11: बिल्कुल सही कहा आपने।
12: तो थैंक यू inviting me once again और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा और

0: मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी कैसी हैं आप? और प्राची जी आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर, और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हो, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती हैं।
0: बिल्कुल
1: ना?
0: मुझे भी नहीं लगता है ये तो बिल्कुल आसान है। स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल तो मम्मिया भी वर्किंग हो गई है ना। बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट प्राची। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है, हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आरजी आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए एक तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: आई एग्री।
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही है।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची, और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर काम काज करने के लिए नहीं जाती हैं या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिए हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ काम काज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी, और कहीं ना कहीं नया कॉन्ट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं, तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं।
0: एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची आज हम विमेंस की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज उस पर बात करेंगे, और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हो, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही है कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी मुझे याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रखती हूँ, मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रखती हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और ये है आपके शहर का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहो। चलो जी अभी मिलते हैं एक छोटे से गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच। यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: देखिए कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना? अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं, बट वही है सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हाँ सपोर्ट बहुत जरूरी है, अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगी।
0: करेक्ट। कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट यानी समय का संतुलन। वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंज है।
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं, यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है।
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपनी बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस की भी अपना बेस्ट देना चाहती हैं और घर की परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं। तो ये जो बात है इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसी वुमेन, जो भी हमारी ऐसी वुमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को।
0: करेक्ट, राइट राइट राइट। कहते हैं दोस्तों थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है मेरे भाई। और बिल्कुल हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही। हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका और आप सुन रहे हैं मैं कबंज। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को सेल्स कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं। घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही हैं, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है तब से वो अपने काम को, जो भी उनके तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती हैं, कोई अच्छी सिलाई करती हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत हाँ, बढ़िया है ना। और कुछ वीमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो रेसिपी बनाना सिखा रही हैं। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती हैं, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती हैं। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब है, बहुत इजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: कॉटन, मुझे भी लगता है दोस्तों। और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है। क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: एक ही मकसद है, देश की रक्षा। उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
1: यस सर।
0: इज दैट क्लियर?

जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं।

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन कामकाजी विमेंस की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी विमेंस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। और बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था, जो उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं। और बड़ी क्या बोलते हैं, एक तरह से एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर रही हैं वुमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है,
1: बिल्कुल
0: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन में घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। वेल, आजकल की मम्मियां वेल बहुत एक्टिव होती है, अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती है। और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती है तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल, जो उनका जो फील था हम बस घर तक समझते थे, मतलब ऐसा एक हमारा लोगों का कहीं ना कहीं परसेप्शन था कि उनका जो फील्ड है वो बस घर की चार दीवारी तक है। पर आज इस जो मोबाइल ने हमारी मम्मी, जो हमें हमारी आसपास आंटीज हैं, उनको एक तरह से पूरी तरह से वो एम्पावर्ड कर दिया है। जो भी उनके अंदर स्किल है, भले वो बहुत छोटा स्किल हो कि कोई बड़ा स्किल हो, फिलहाल स्किल तो स्किल होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है।
0: मुझे लगता है, प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्राची।
1: और अपने उस स्किल के दम पर भले उनको मेहंदी आती हो, अपना बिजनेस उन्होंने इस तरह से एस्टेब्लिश किया है, जो नेटवर्क अपने लिए
0: क्रिएट किया है
1: और उससे जो वो अर्न कर रहे हैं, एक तरह से एम्पावर्ड बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छे दौर में हम आ गए।
0: करेक्ट। तो दोस्तों, बस आज का यही संदेश है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चुनौतियां आना कंपलसरी है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां तो आती ही हैं। जिस लाइफ में चैलेंज रहा हो वो लाइफ ही किस काम की, क्यों प्राची? तो बस आपको चैलेंजेस का सामना करना है। और कोई लीडी अगर चुनौतियों का सामना कर रही है तो हमें उनका सामना करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनके साथ उनके काम को सराहना है और उनके आत्मविश्वास के साथ उन्हें और ज्यादा पुश करना है कि वो और मोटिवेट हों।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है और सब उन्हें और इन्हें प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके अपनी बात कहें, अपने स्किल, अपने टैलेंट से पूरे शहर को, पूरी दुनिया को रूबरू कराएं।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ फिलहाल तो मैं लूंगा आपसे इजाजत। बस यही कहना मैं चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती है, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आगे बढ़ाती हैं। राइट प्राची?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम करते हैं सलाम ऐसी महिलाओं को।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और बस मैं तो जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना आंटी, अगर आपके अंदर कोई बढ़िया टैलेंट है दीदी, तो उसको बाहर निकालो भाभी जी, सिर्फ किचन तक मत रखो। अगर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो। हो सकता है वो छोले भटूरे का रेसिपी किसी और के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
0: आजकल लड़कियां ना ऐसा हो गया है कि मतलब यू नो खाने बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि स्टडी करना है, उनको फ्यूचर ड्रीम पूरे करने, तो यूट्यूब भी उनके लिए हेल्पफुल होता है।
1: हाँ।
0: है ना, तो ऐसे में जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है,
1: इतना एक्टिव है,
0: एब्सोल्युटली, तो उनकी रेसिपी देख के आज की जेंजी को, आज की लड़कियों को एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगा यार। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, प्लीज आइए एंड लाइफ में ऐसे ही रॉक मचाती रहिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: चलिए हम लेते हैं आपसे इस प्रोग्राम से इजाजत और फिर मिलेंगे जल्दी इस नए कार्यक्रम में और कुछ नई बातों के साथ। और ये तो महिला छह महिलाओं का कार्यक्रम, अगर आप आना चाहती हैं, आप कोई अपनी प्यारी बात करना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये मंच खुला है, क्यों प्राची?
1: आप हमसे जुड़ सकती हैं, हमारी फरमाइशी नंबर 8968968968 एक बार और बता देती हूँ, 9837896896।
0: बिल्कुल, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टैलेंट और अपना नाम, हो सकता है अगली मॉर्निंग आप हमारे साथ स्टेशन पे हो। फिलहाल हम दोनों जाते हैं छोड़ के कुछ खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनते रहिए महिला मंच, जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।
0: बाय
1: बाय बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
5: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
4: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ 43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: नमस्कार श्रोताओं, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश। और साथियों, कहते हैं ना कि महफिलें वही सजती हैं जहां दिलों का साथ होता है। महफिलें वही सजती हैं जहां दिलों का साथ होता है। हर फरमाइश के पीछे अपनों का एहसास होता है। तो आइए आज इस ब्यूटीफुल सफर को बनाते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत आपके पसंदीदा गीतों के साथ। और आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा श्रोताओं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। देखिए साथियों, एंड अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो यहाँ पर वक्त हुआ है 3:09 राइट नाउ। और हमारे फर्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: यस सर, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं जी। बताएगा अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैं हो गया, मैं कुछ नहीं करता हूं।
0: अच्छा, आप घर पे आराम करते हैं और रेडियो सुनते हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, अपनों के साथ टाइम बिताना चाहिए। और आप बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मुझे बता दे तो कुछ आ गया है।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं सर की पसंद का और लौट कर आ रहे हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए। और ये प्यारा सा गाना आप सुनने वाले हैं किशोर दा की आवाज़ में, बहुत प्यारा सा।
2: डाउनलोड करिए

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद के गीत सुनते हैं एंड किसी को डेडिकेट करने का अगर ये अवसर आपको मिल रहा है तो इस मौके को ना आप बिल्कुल भी मिस मत करो। एवरीवन, मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा चांस, अगर कोई आपसे नाराज है, कोई टूटा हुआ है, तो आप उसको उसका फेवरेट गाना सुनवा कर मना सकते हैं। और देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। और सबकी खुशी में अपनी खुशी होती है। और अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश। और ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना गीता दत्त जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। मेरा दिल जो है वो एफएम मुरादाबाद पे ही आया हुआ है और ये यहाँ से कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। थैंक गॉड ये एफएम मुरादाबाद से लगा हुआ है, तभी तो आप सब मुझे मिले हो ना, इतने स्वीट लिसनर हमारे। तो अभी बात करते हैं कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हेलो हाँ जी, इतना क्यों शर्मा रही हैं आप?
1: नहीं, शर्मा नहीं रही हूँ, आप बताइए।
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए अपना नाम, कहाँ से बात कर रही हैं और आपका शुभ नाम क्या है मैम?
1: आफरीन नाम है मेरा।
0: आफरीन
1: जी,
0: बहुत ही खूबसूरत नाम है, मुरादाबाद से। क्या करती हैं आफरीन जी, बताइए अपने बारे में जरा।
1: बस हाउसवाइफ हूँ, और क्या करती हूँ।
0: अच्छा, घर पर ही आप रहते हैं, घर के सारे काम मैनेज करते हैं, राइट?
1: जी जी हाँ।
0: और सबको टेस्टी गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है ना?
1: यही काम।
0: अच्छा तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ मैम आप रेगुलर सबके लिए इतना कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं, कभी सर ने आपके लिए कुछ बनाया है?
1: बनाया है, चाय पिलाई बनाकर।
0: कैसी लगी चाय? चीनी की जगह नमक तो नहीं डाला?
1: नहीं, चाय बहुत बढ़िया बनाई थी।
0: अरे वाह, फिर तो आज सर सुन रहे हैं आपको, वो तो खुश हो जाएंगे कि मेरी मिसेज ने मेरी तारीफ कर दी है।
1: और क्या, नाम बहुत बढ़िया है मेरे हस्बैंड भी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हैं आप कि आपको इतने अच्छे हमसफर मिले हैं और आप भी बहुत प्यारी हैं। बताइएगा मैम,
1: मुझे फरमाइश करनी होती है तो मैं इनसे ही कह देती हूँ।
0: हाँ, वो हमेशा आपका नाम लेते हैं और आज फाइनली आपसे हमारी बात हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, कैसा लगता है मैम, कैसे लगते हैं आपको जब सर आपका रेडियो पर नाम लेते हैं ऑन ईयर और आपकी पसंद के वो गीत सुनते हैं, तो आप सुनती हैं, कैसा लगता है आपको, बताइएगा?
1: अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है,
0: बहुत खुशी होती है ना?
1: जी बहुत खुशी जी होती है।
0: तो आज तो ये खुशी डबल हो गई है क्योंकि आप भी मुझसे ऑन ईयर बात कर रहे हैं। बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: आज मैं यही गाना सुनना चाह रही हूँ, ये मौसम भीगा भीगा है,
0: हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों ना मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है।
1: हाँ, ये वाला सुनने चाहिए।
0: ठीक है, ये गाना आपको सुनवा दें मैम, शुक्रिया।
1: माशाल्लाह बहुत बढ़िया है,
0: थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, आप भी बहुत स्वीट बोलते हैं मैम। ओके, ख्याल रखिएगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही आप जैसे अभी मुस्कुरा रही थी ना, खिलखिलाकर, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहिएगा।
1: आपकी दुआ है, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे।
0: मैं खुशी बात कर रही हूँ।
1: खुशी? हाँ जी, खुशी रहेंगे।
0: हाँ जी, हमेशा खुश रहिए, हम भी यही ब्लेसिंग्स आपको देते हैं। और ये प्यारे से गाना आप इंजॉय कीजिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका,
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक मैम की पसंद का। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है, भीगा भीगा तो नहीं, लेकिन हाँ बादल भी हैं, हवाएं भी हैं, लेकिन मौसम में तपिश भी है, गर्मी भी है, लेकिन ये प्यारा सा गाना आपको राहत देगा, आप इंजॉय कीजिएगा और मुझे कॉल भी कीजिए। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896 98 378 96 98। ये हमारे स्टूडियो का वो नंबर है जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस नंबर को भूलिएगा नहीं, इसको सेव करके रख लीजिए अपने दिल में भी, ठीक है। मोबाइल में भी और दिल में, दोनों जगह। अभी फिलहाल ही गाना सुनो, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना। मौसम भी बहुत प्यारा है और ये मौसम जो है ना बड़ा ही लुका छुपी खेलता है। कभी तो धूप निकल जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, तो कभी क्या होता है, हाँ कभी हवाएं चलने लगती हैं। और ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक अलग ही फील है ना दोस्तों। हमारी जिंदगी भी ना ऐसी ही है। लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, तो कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है। और कभी लाइफ में क्या होता है कि थोड़ा सा लाइक एक ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में जब हम सोचते हैं कि यार सब कुछ छोड़ के ना एक शांत जगह पर चले जाते हैं जहाँ कोई ना हो, पहाड़ हो, पानी हो, झरना हो और खूबसूरत चारों तरफ हरियाली हो और अकेले हम बैठे हों, है ना। ऐसा मन करता है ना कभी कभी। तो ये मन हमारा बहुत चंचल है और ये मौसम भी बड़ा चंचल है, रंग बदलता रहता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप बिल्कुल भी मत बदलिए, आप हमें फ़ोन कीजिए। नंबर है 9837 8968 9 6। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपको बताइएगा।
1: नीरज कुमार।
0: नीरज कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: लोधीपुर मुरादाबाद जवाहर नगर।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं सर आप।
1: कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, बच्चों को देखते
0: हैं। अच्छा, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। फैमिली में रहना, सबको संभालना, परवरिश करना भी अच्छी बात है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप बखूबी निभा रहे हैं। तो नीरज जी बताइएगा, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: बीबी नंबर वन, ये है बीबी नंबर वन। बीबी नंबर वन, ये है बीबी नंबर वन।
0: अरे वाह, अमेजिंग, ये तो बहुत चल रहा है।
1: बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैडम भी खुश हो जाएंगी।
0: हाँ, और आप भी हैप्पी हो जाएंगे। आप तो खुश हैं ही, लेकिन आपकी मिसेज और ज्यादा हैप्पी हो जाएंगी। ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। एंड बहुत प्यारा गाना है, हम लौट कर आते हैं। अगर आप भी कोई गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें फटाफट से कॉल करो। आप नंबर आपको मैं बताती हूँ, 9837 8968 9 6।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और श्रोताओं, शो चल रहा है हेलो फरमाइश। अभी आपने बहुत ही प्यारा टाइटल ट्रैक सुना बीवी नंबर वन का एंड करिश्मा कपूर और साथ में सलमान खान जी की जोड़ी, उफ कमाल की थी यार। अभिजीत और साथ में पूर्णिमा जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी एंड देव कोहली जी के लिरिक्स थे। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, आपको भी अपना नाम बताइएगा सर। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, घुटन हो रही है मैम आज तो गर्मी की, हमारी चल रही है, घुटन भी है।
0: हाँ जी हाँ जी, तपिश भी है। आप बताइएगा सर, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: नमस्ते
2: मैम।
0: आपको भी नमस्ते, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो आप, बताओ? जी बताइएगा, आप कौन सा गाना सुनोगी? नजरा के तीर।

ठीक है, गाना सुनवाते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे भी करेंगे बातचीत, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896 और ये हरियाणवी गाना है लेकिन बहुत अच्छा है, तो सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बातचीत करेंगे। श्रोताओं, आप भी इस मौके को मिस मत कीजिए, जल्दी से हमें कॉल कीजिएगा। नंबर हमारा है 9837896896।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, हमने अपना दिल किसी को नहीं दिया है क्योंकि हमारा दिल एक ही है और हमने उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। वैसे दोस्तों, आप सभी का अगेन वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर जिला बिजली समर्थ प्रदेश।
0: जी हारून जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ सर, आप बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: जी मौसम अच्छा है, बादल हो रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, आंधी आंधी चल रही है इस बार।
0: अच्छा, हवाएं चल रही है, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगी सर?
1: तेरा प्यार है क्या अजीब दास्तान है, ये का सुना देना 1994-95 की है, कुमार सानू अलगया की आवाज में।
0: ठीक है सर, तो ये गीत आपको सुनवाते हैं। किसी का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: जी सबसे पहले तो आप हैं, तुम कुमार हैं, वर्मा हैं, दादा प्रसाद हैं, सलमान भाई शहडोल हैं, आदर भाई मुरादाबाद के हैं, श्रोता सुनना है मुरादाबाद के लिए, सभी श्रोताओं के लिए है।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, ये खूबसूरत से गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837-896-896।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
6: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
5: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026, जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ। देखिए साथियों, दोस्तों, वक्त हुआ है 4:04 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बात करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप? नमस्कार।
1: नमस्कार, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आपके परिवार में और आपके स्टूडियो में क्या हाल है?
0: जी सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं सर। आप बताइएगा, आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, सबको अच्छा रहना चाहिए। आप बताइएगा सर, आपके यहाँ का मौसम कैसा है आज?
1: मौसम गर्मी है बहुत।
0: अच्छा, बहुत गर्मी है?
1: जी बहुत गर्मी।
0: जी तो इस गर्मी में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, बताइएगा हमें।
1: आए दिन बहार के और गाने के बोल रहे मेरे दुश्मन को मेरी दोस्ती को तरसे, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी जी जी बिल्कुल बताइए।
1: अलिया खान है, सिमरन खान है, अयूब खान है, जिशान मारती है, शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रही दूल्हा अंसारी, तनूर अंसारी, मसूद हुसैन, तारिक अली, इरशाद अली, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, सभी साथियों के साथ आपके ये प्यारा से गीत आपको सुनवाते हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे करेंगे बातचीत। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ, मोबाइल नंबर है 9837896896।
2: सी है के बन के दो

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और गीत आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के। जी हाँ, गाना वही जो आपका दिल चाहे। और ये मौका आपके पास है तो मैं कहना चाहती हूँ आपसे, आप बिना किसी देरी के मुझे कॉल लगा सकते हैं। एवरीवन, मैं आपकी दोस्त खुशी आपके साथ हूँ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश जी। सर, अपना शुभ नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम जफर हसन है
0: जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: जिला रोहतास, बिहार।
0: अच्छा, बिहार से आप बात कर रहे हैं?
1: जी जी
0: जी बताइएगा सर, क्या करते हैं आप?
1: हमारा तो खेती बाड़ी का काम होता है। अभी तो यही आपको 15 जून को नहर का पानी आपका बराज बांध से थोड़ा सूख चुका है।
0: अच्छा अच्छा।
1: धान के बीज के लिए जो है, जो मदद की दो कट्टा, तीन कट्टा, पाँच कट्टा छिड़केगा।
0: जी जी जी।
1: अगले महीने, हाँ तो अगले महीने में, मदद एक महीना के बाद धान की रोपनी होगी, मतलब बुआई होगी।
0: जी जी जी जी।
1: और यहाँ तो ये रोहतास जिला ऐसा है कि थोड़ा सा विस्तार से बता दें।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: रोहतास जिला ऐसा है कि पूरे बिहार में आपको राइस मिल, चावल की मिल नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पहला ये जिला है कि राइस मिल है।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात
1: है। ये हमारे रोहतास जिला बता रहे हैं आपको मैडम।
0: जी जी जी।
1: और दूसरी बात, जब हुमायूं बादशाह जो गति पर था, बाबर बादशाह का बेटा,
0: जी जी,
1: जब बंगाल से जब वो आ रहा था, इसी हमारे रोहतास या जो सासाराम हेड क्वार्टर है।
0: हाँ जी हाँ जी, जानते
1: हैं। बक्सर जिला है, इसी के बीच एक जगह चौसा है
0: जी।
1: बहुत जबरदस्त जंग हुई। तो जंग में क्या हुआ कि हुमायूं शिकस्त हुआ और मल्लाह ने जो है उसको बचा दिया, पार कर दिया, उत्तर प्रदेश आई, सीधे भागा मुगल सराय होते हुए दिल्ली, दिल्ली का बादशाह बन गया शेरशाह। शेरशाह का मकबरा देश विदेश से मतलब लोग देखने आते हैं, हम 500 बार देखा है।
0: जी जी।
1: और तीसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में सोन नदी टिहरी ऑन सोन में है, वहाँ जो है 99 पाया है, जो कहे कि हिंदुस्तान में पूर्व नदी में 99 पाया नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से जाइए इधर पूरब में सरपस्त है, और उधर से अगर आइए तो इधर जाइए तो दाहिने में देखिए, और उधर सही तो पाए देखिए पश्चिम तरफ से 99 पाया।
0: ओके सर।
1: जी। और पहाड़ भी बहुत है ऊपर भी जो है, रोहतास नाम पर रोहतास किला जो है ऊपर में जो है रोहित महाराज उनका नाम था।
0: ओके।
1: उन्हीं के नाम पर जिला ये रखा गया ये रोहतास। और सर बहुत अच्छे अच्छे आपको मंदिर है, मस्जिद है, तालाब है, फोर्स का उस जमाने का रहने का अखाना है, बहुत बहुत मतलब 28 किलोमीटर पर लिखा हुआ 28 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ पर ये सब
0: कुल मिलाकर वहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, राइट?
1: हाँ जी
0: जी।
1: क्या कहना, धान भी बहुत जबरदस्त होता है हमारे जिला में।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच, आपने अपने शहर के बारे में इतना कुछ बताया।
1: तो देखी है, शेर सुनिए, बात तो वो होगा, और भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर लगेगा तो बताएंगे।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जिंदगी कम है मुस्कुराते रहो, जब तलक जम है मुस्कुराते रहो, सबसे हालात न करो जाहिर, अगर कोई गम है मुस्कुराते रहो।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें आपने कही हैं सर।
1: जी, गम भी है तो खुशी को पता नहीं चले, मुस्कुराने में एक दोस्त पर सर सुन लीजिए। जी। मुसर्रतों पर रिवाजों का सख्त पहरा है, न जाने कौन सी उम्मीद पे दिल ठहरा है, तेरे आंखों में झलकते हुए इस गम की कसम, दोस्त दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है।
0: बहुत ही खूबसूरत से आपकी लाइन।
1: जी जी, सर सर की बात चाहिए हो तो आपको, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मखसूद हुसैन अब दूर टूटते हैं मुरादाबाद,
0: जी जी
1: सुन रहे हैं।
0: जी
1: जी, मुकेश कुमार भी जो है वो भी सुन रहे हैं उनका कसा,
0: जी सर।
1: भदर्रा के जम्मू कश्मीर के जो भी सुन रहा है हमारा दोस्त है पुरुषोत्तम कुमार
0: जी, आप बताएंगे सर आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सुनते हैं मैडम, सब बात हो गया, पहली बार आपसे गुफ्तगू हो रही है, पहली बार, तो इस गाने को सुन लीजिए तुम नहीं
0: जी बताइए
1: पसंद में लिखी है
0: जी सर।
1: हाँ सुन लीजिए, टूटी फूटी आवाज भी सुन लीजिए। फिल्म के नाम है छोटे बहू, गाया था मोहम्मद रफी ने।

0: बहुत ही खूबसूरत आपने गुनगुनाया है सर। सुनवाते
1: और
0: हैं आपकी
1: शुक्रिया
0: पसंद
1: मैडम।
0: का ये प्यारा सा
1: जी
0: गीत।
1: हिंदुस्तान में सरकारी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में मैं भाग लेता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम श्रोता सुन रहे हैं उसका यातायात करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे स्टेशन में भाग ले रहा हूँ
0: अच्छी बात है सर,
1: 2008 से
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अभी 2000 से अभी तक।
0: सर ऐसा होता है कि रेडियो का रिश्ता ही ऐसा है, हम जितनी बार भी रेडियो सुनते हैं ऐसा लगता है कि एक रेडियो के बिना, मतलब रेडियो से ऐसा रिश्ता बन गया है कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाते। चाहे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो हम आजकल रेडियो भी डिजिटल हो गया है, ऐप के माध्यम से हम सुन सकते हैं। और ये हमारा इतना प्यारा साथी है ना कि हमारे हर सिचुएशन में हमारा साथ होता है। चाहे

हम खुशी में हों, गम में हों, और जब हम कोई हमारा साथी हमें मिल जाते हैं रेडियो के माध्यम से, कोई जैसे हम प्रेजेंटर हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं, तो आपका दिन भी खूबसूरत हो जाता है। और अभी सर की पसंद का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में। साथियों, आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर है 9837896896। खुशी लौट कर आती है इस खूबसूरत से गीत की उस पार, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 98 378 96 896।

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चूके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 4398/01/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: दावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
1: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
1: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: TNC अप्लाई।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना अलका याग्निक जी साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। और दोस्तों, जब एफएम मुरादाबाद से प्यार हो जाता है ना, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होता है, कनेक्ट रहने के लिए आपको फ़ोन लगाना पड़ता है। और फ़ोन लगाने के लिए नंबर मैं आपको बताती हूँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश भी और उनसे बातचीत कर लेते हैं डायरेक्टली। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
5: हाँ जी, हेलो।
4: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
5: अमीर हुसैन, रहमत नगर मुरादाबाद से बोल रहा हूँ।
4: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है अब?
4: हाँ जी, अब तो पहले से ज्यादा बेटर है।
5: अभी पिछले हफ्ते मैंने आपसे बात की थी, आपको बहुत तेज सा जुकाम चल रहा था।
4: हाँ जी, जुकाम खांसी सब कुछ हो गया था, अभी तो फिलहाल ठीक है हम।
5: अब ठीक, बहुत अच्छी बात है, हम भी ठीक है जी। सब ठीक है।
4: हाँ जी, ऑल गुड सर, सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या करते हैं आप सर?
5: हम पीतल के फूलदानों पर गुलदस्ते बनाते हैं, यानी फूल सबसे छापते हैं उनपे।
4: अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं सर।
5: जी,
4: डिजाइनर हैं आप।
5: पीतल के बर्तनों पे हम लिखते भी हैं, कोई साफ कुछ लिखवाना चाहते हैं ना, हम वो भी लिखते हैं।
4: अरे वाह, वही तो हम कह रहे हैं कि आप तो कलाकार हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं।
5: जी जी जी जी
4: जी,
5: आप भेजना कोई अपने घर का बर्तन, उस पे हम नाम लिख देंगे आपका।
4: शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच आपने कहा। जी आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
5: हम वही गाना तुम बताते हैं, भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना फरार है जगह नहीं देना।
4: लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़ में है।
5: जी जी हाँ हाँ, इसका नाम मुझे याद नहीं, भूल गया मैं इसका।
4: कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक गीत आपको सुनवाती हूँ। धन्यवाद आपने कॉल किया,
5: बहुत बहुत शुक्रिया,
4: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अपने फेवरेट गाने सुनने के लिए हमें फोन भी लगाते रहिए, मोबाइल नंबर मैं आपको बता दी हूँ 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और श्रोताओं, आप भी इस ब्यूटीफुल सेशन में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. लाइव फोन इन कार्यक्रम है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने फेवरेट गीत सुन सकते हैं. अभी फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं. हेलो फरमाइश. हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? आपको भी नमस्कार प्रणाम. अपना शुभ नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये भी बताइए सर अपने बारे में.
1: जी, मैं राजू यादव.
0: जी बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और बगीचे में लेटे हुए हैं और ऐसे मुरादाबाद का भरपूर मजा ले रहे हैं.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप आनंद ले रहे हैं. बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं सर? बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक. आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद. हाँ, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आज आप.
1: आज

0: आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, नेटवर्क इश्यू है शायद आपकी साइड, आपकी वॉइस कट रही है सर।
1: तुम्हारी यादें आज भी साथ हैं, तुम्हारे बिना अधूरी है बात है। मुलाकात का करम कर जाना, दिल को फिर से अपना बना जाना।
0: बहुत ही खूबसूरत सी गीत लाइनें आपकी हैं, शायरियां आपने बहुत प्यारी बोली हैं सर, धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 से। आपको भी प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुनने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बीटा से।

0: to enjoy.
1: Hi, the energy. आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है. After all, उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं.
3: A complete range of wedding collection जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री.
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद.
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है. संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7066002430.
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.
6: जा जी ले अपनी जिंदगी.
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने. तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और श्रोताओं, आपका फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं, किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑन द वे अभी कार में हैं तो बस खुशी आपसे यही कहेगी कि हौले हौले ड्राइव कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए आप प्यारे गानों के साथ, और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए। लेकिन हाँ, सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिएगा और पानी भी पीते रहिए, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
1: मोहम्मद
0: जी। जी बताइएगा रिहान जी, कैसे हैं आप? जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: मूवी का नाम है गदर। मूवी का नाम
0: है गदर। मूवी का कोई भी ट्रैक प्ले कर दी सर।
1: जी मैम,
0: ठीक है रिया जी, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: मैम तो नाम लेना चाहते?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बताइएगा आप अपने दोस्तों के नाम।
1: मोहम्मद जेड हो गया, मोहम्मद नवाज हो गया
0: जी,
1: मोहम्मद वसीम हो गया।
0: ठीक है,
1: मोहम्मद शामिल हो गएंगे, सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत। आपने कॉल किया, धन्यवाद। तो श्रोताओं, मैंने एक ट्रैक सेलेक्ट किया है यहाँ पर फ्रॉम द मूवी गदर 2 से, मैं निकला गड्डी लेकर। अगर आप गड्डी लेकर जा रहे हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए म्यूजिक का, क्योंकि गाना बहुत ही खूबसूरत सा है और आपके सफर को और भी ज्यादा ये खूबसूरत बनाएगा।
2: मोटरसाइकिल ले
3: दिला दीजिए ना।

हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, समय हुआ है 4:56। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपसे कल मुलाकात करेंगे सुबह 10 से 12। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और जाते जाते खुशी आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अपने अपनों का और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। गर्मी ज़्यादा है तो पानी पीते रहिए, एंड कुछ हेल्दी ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं जो ठंडी हैं और आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जूस भी आप पी सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं, वो बहुत है हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप इसका भी इस्तेमाल करें। बाकी आपको नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर देने वाली है रीना जी, आपकी शाम को बनाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत। और मुझे दीजिए जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
5: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
4: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: टीएनसी अप्लाई।
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें jenhey.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026। जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
6: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 4398/01/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
3: प्रकृति से खुशियों की लहर।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: जी गुड वाली इवनिंग है, आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है। अहो जी मेका की हाल चाल है, तुसी बढ़िया जी? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, और इस गर्मी में जो इंसान परेशान हो जाते, भैया इतनी गर्मी है कि क्या करे क्या ना करे, ऊपर से भूख कम प्यास ज़्यादा लगती है और कुछ ठंडा खाने पीने का मन करता है ना, लेकिन ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप ऑफिस से घर के लिए निकल चुके हैं तो वेल डन। और आपने क्या करना है जी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से जाना है अपने घर, और हेलमेट सीट बेल्ट ज़रूर अपने साथ रखना है। क्योंकि देखो पता है क्या हुआ, हम अभी अगर मैं बात करूँ तो हम बाहर गए थे, सो हमने ना स्कूटी ऐसी, मतलब ऐसी स्कूटी लेकर निकल गए, हमने ना हेलमेट लिया ना कुछ नहीं लिया। तो बाद में हमें जब थोड़ी दूर जाते तो पता चलता यार हमने तो सीट हेलमेट तो लिया ही नहीं, अब क्या होएगा। सो हमने सोचा कि चलो ठीक है आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें क्यों दिखे, अरे अरे वही जो दिख जाते हैं जो नहीं दिखने चाहिए, मामा खाकी कलर में जो पहने हुए

ड्रेस, वो दिख गए हमें। फिर क्या, मैंने कहा ये काम करते हैं, सामान मन बाद में लेते, पहले घर चलते हैं। घर चलते हैं तो इसीलिए कहते हैं श्रोताओं, जल्दबाजी में कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको मतलब थोड़ा सा रिग्रेट हो जाए कि यार काश, मतलब समय डबल लगा ना, अगर आप हम उसी टाइम हेलमेट लेकर चले जाते तो हमारा शायद रिटर्न वापस नहीं आ पाते, अपना सामान लेकर ही आते, अब उतना समय वेस्ट हुआ। इसीलिए जब भी आप घर से बाहर जाए, एक समय के लिए ना कुछ और चीज़ें भूल जाए, लेकिन हेलमेट बिल्कुल ना भूले, सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खा ली तो कोई बात नहीं, टहल लीजिए पच जाएगा, लेकिन सीट बेल्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन आप साफ और साफ कैमरे के निगरानी में होते हो। सो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ऑफिस से निकल चुके हो तो मूड ऑफ है, अरे अरे मूड ऑफ मत करिए, अरे रीना है ना आपके साथ, आपकी दोस्त ढेर सारी बातें करेंगे, आपका मूड बिल्कुल चिल हो जाएगा। देखिए जब हम, सबसे सिंपल फंडा है कि कोई भी कुछ कहता है आपको, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, वो आपके अंदर ही रहेगा ही नहीं, तो क्यों टेंशन। यानी कि घर की बातें घर तक, बाहर की बातें बाहर तक, ऑफिस की बातें ऑफिस तक, और आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो जितना हो सके, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए एक जिंदगी है उसको जी भर के जियो। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बड़ा ही मस्त वाला गाना है, बम डिगी डिगी बम बम आय हाय, क्या बात है जी, बहुत प्यारा गाना है। सो इस गाने को एंजॉय करते हैं जी।

गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो भैया 5:29 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के बीच वेदर अपडेट। हाँ जी, वेदर अपडेट जिसका इंतजार हमें बेसब्री से होता है कि ओ माय गॉड, इस गर्मी में हमें थोड़ी सी मतलब राहत मिल जाए, चैन की सांस हम ले पाए, है ना, लेकिन ले नहीं पाते, गर्मी इतनी ज्यादा ना, क्या ही कर सकते भैया। आज की तारीख 16 जून और कल 17 जून, मतलब पता नहीं चल रहा भैया ये दिन कैसे निकलते जा रहे हैं, मतलब छठा महीना चल रहा है और सातवां आ जाएगा ना, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं श्रोताओं, तो कल ये बताया जा रहा है 17 जून को यानी कि यानी कि 21 राज्यों में, उसमें शामिल है यूपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, मतलब बारिश जम कर आने वाली है, 21 राज्यों में बारिश आने वाली है। और मुरादाबाद में आज थोड़े बड़ी बढ़िया है, मजा आ जाएगा जी, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल जाएगी। और जो क्या बोलते हैं आंधी तूफान 85 की स्पीड में आने वाली है ये कहा जा रहा है। सो देखते हैं कल का जो वेदर होगा वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन इसमें मुरादाबाद का नाम नहीं आया, ये इस बात का मुझे बड़ा दुख है भैया, बस यूपी लिख दिया है, यूपी में कहाँ बारिश आएगी कहाँ नहीं आएगी वो कुछ नहीं पता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर बिहार में बताया जा रहा है कि बारिश आने की पूरी संभावना जताई जा रही है श्रोताओं। सो आपके लिए कड़क सुबह में लेके मतलब बहुत जल्द अभी पूछ लेते हैं, चलिए जी बाद के, क्योंकि कल के ऊपर कोई डिपेंड नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ी देर के लिए भी कोई बातें नहीं छोड़नी चाहिए, जो आपके दिल में होती है वो बोल देनी चाहिए। सो मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि अगर 10 सेकंड के अंदर कौन सा ड्रिंक रेडी होके हो सकता है, सोचिए और हमें फटाफट मैसेज करिए, नंबर 9823789689। चलिए फिलहाल के लिए गाना जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं और इस गाने के बाद लौट कर आते हैं और करते हैं क्या, अरे ढेर सारी बातें और क्या करेंगे बताइए। ओहो चलिए जी, पहले गाना एंजॉय करते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अकेला क्या छोड़ा तूने, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
2: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
1: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ 43986105/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे आप अर्जुनीना के साथ। समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 40 मिनट हो चुके श्रोताओं, और कुछ मैसेज है उनको शामिल कर लेते हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हैं? और रीना जी के साथ गुड वाली इवनिंग। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं भैया, और जामुन की ये फोटो भेजते हैं हमारे पास, और इनका कहना है कि ये जामुन है ना अभी अभी पेड़ से गिरे हुए। आय हाय क्या बात है जी, मतलब गर्मी में और जामुन, आय हाय मजा आ जाता है जी। लेकिन जामुन, अगर आपने जामुन की बात की है तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं आज। हेल्थ अपडेट की बात कर लेते हैं, जामुन खाने के फायदे और नुकसान क्या हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ ज्यादा अति से ज्यादा हो जाते हैं तो वो अच्छा भी नहीं होता है। तो अगर आप जामुन खाते तो इसके फायदे हैं, ये पाचन डाइजेशन बेहतर बनाता है, शरीर को ठंडा देता है, विटामिन सी और आयरन का अच्छा स्रोत है, और रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायता करता है ये। और साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा खाती है तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, सुनिए जरा। ज़्यादा जामुन खाने से पेट में दर्द, गैस बन सकती है, खाली पेट अधिक मात्रा में खाने से कुछ लोगों को परेशानियां हो जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा खाने पर कब्ज की शिकायत हो सकती है, जिन लोगों को एलर्जी हो उन्हें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना भैया यानी कि स्वाद में खट्टा मीठा जामुन सिर्फ मजा ही नहीं देता बल्कि सेहत का भी खजाना है। बस याद रखिए, हर अच्छी चीज की तरह जामुन भी संतुलित मात्रा में ही खाइए, क्योंकि अधिक मात्रा में कोई भी चीज आप खाते हैं, जैसे ओवर ईटिंग करते हैं तो वो दिक्कत ही होता है। इसीलिए जामुन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन सोच समझ कर खाना हमारी आदत है। और साथ ही साथ अगर आप जामुन खा रहे तो इस पर काला नमक छिड़क के खाइए, वो और भी बेहतर माना जाता है। चलिए श्रोताओं, एक और प्यारे से गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और करते हैं ओए होए ढेर सारी बातें। फिलहाल एक बहुत ही झकास गाना
1: हुआ छोकरा जवारे।
2: हायरिंग फॉर

0: saw that my PR.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है जी यार, जरीना के साथ अब कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी, इवनिंग मस्ती शो में हैं। और आज का डे हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमेक्टेशन। हां जी, यानी कि यह दिन उन लाखों लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार को भेजते हैं। इस दिवस की शुरुआत यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में की थी। इसका उद्देश्य यह बताना है कि विदेशों में या दूसरे शहरों में काम करने वाले लोगों को द्वारा भेजी गई रकम सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि परिवार की उम्मीदों, सपनों और बेहतर भविष्य का सहारा भी होता है। सोचिए कितने माता पिता, बच्चे और परिवार ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें इन्हीं पैसों से पूरी होती है। इसीलिए आज का दिन उन सभी मेहनत वाले लोगों को सलाम करने का दिन है जो अपने खुशियों के लिए दूर रहकर उनके जो फैमिली वालों को खुशी के लिए दूर रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर भेजते हैं ताकि घर पर सब अच्छा रहे, सब अच्छे से काम होए। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और उन सभी से एक ही बात कहना चाहूँगी, घर से दूर रहने वाले लोगों की कमाई सिर्फ बैंक खाते में नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान में जमा होती है। सो दिल से सल्यूट है जो घर से बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, एक एक चीज उनका देख रेख, उनका ख्याल रखते हैं, आज उनको सल्यूट है। और इसी के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और क्या करते हैं जी, अरे ढेर सारी बातें करेंगे ना। चलिए फिलहाल एक और गाना

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 4398/01/05/2026। जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:06 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और ये कहा जा रहा है, पहले अगर किसी को खांसी होती है ना, तो क्या करते हैं, हम जाते हैं शॉप से, यानी कि सिरप कोई भी मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, ताकि गले में जो भी खराश है, खांसी है, वो ठीक हो जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, अगर आप खांसी की दवाई लेने जाते हो, उसके लिए भी डॉक्टर की पर्ची आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, डॉक्टर के पास पर्ची बनवा के लाएंगे तभी आपको दुकानों पर, यानी कि जो खांसी की सिरप है वो आपको मिल पाएगी। और अदरवाइज हम क्या करते थे, जाते थे और लेकर ऐसे ही आ जाते थे। लेकिन डिजिटल ज़माना है, नई जनरेशन है, कुछ भी हो सकता है भैया, तो थोड़ा सा सोच समझ कर लेकर आना है। वो एक्चुअली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता कि सूखी खांसी है, मलगम वाली खांसी है, कैसी खांसी है। और ये सिर्फ पर्ची इसलिए मनाया जा रहा है ताकि आपको एक्चुअल में पता हो आपकी आपको खांसी कौन सी है, और आपको सही दवाई मिले और ठीक समय पर आप ठीक हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ नियम इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि आप कोई भी गलत मेडिसिन ना ले, जिससे आपको जल्दी ठीक भी नहीं हो पा रही है, दिक्कत होए जा रही है। सो इससे इसको देखते हुए ये पर्ची वाला जो नियम है वो शुरू किया जा रहा है। सो और भी ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, बस आरजुरीना के साथ बने रही है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल ये धमाल यानी कि धूम मचाले वाला गाना एंजॉय करते हैं।

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 439861/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में तो समय हो चुका है 6:17। सो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दुखद खबर हो सकता है क्योंकि आजकल हर चीज पर हम एक्टिव रहते हैं। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप है तो पूछिए मत। सेकेंडों के अंदर हम ऑनलाइन आते हैं, सेकेंडों के ऑफलाइन चले जाते हैं, लेकिन कुछ सेटिंग ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता भैया कौन ऑनलाइन है कौन ऑनलाइन नहीं है। लेकिन ये जो टेलीग्राम वाला है, जो इसको बैन करने के लिए जो अब ये कहा जा रहा है कि टेलीग्राम है वो बंद बैन कर दिया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि जो नीट री नीट पेपर है वो लीक से बचा जा सके। और जो पेपर आपको पता है री नीट पेपर जो है वो फिर से लीक हो चुके हैं, और जो ये कहा जा रहा है इसको बंद करने का यही मकसद है क्योंकि लाखों बच्चे मेहनत करते हैं। और सोचिए जो मेहनत नहीं करता हो और पेपर लीक हो जाए, उसको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर आसानी से वो अच्छे मार्क ले जाएगा। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए, ताकि वो अच्छा मार्क ना ले जा पाए, और भी बच्चे हैं जो बहुत तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छा मार्क चाहिए, तो उसी लिए जो टेलीग्राम है उसको अब बंद किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, ताकि कोई भी पेपर अब लीक ना हो सके और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो सके। अब ये बात समझ नहीं आती, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी पेपर लीक कैसे हो जाता है, या तो मतलब समझ नहीं आते भैया। पहले के टाइम में ना कोई भी पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया जो डिजिटल जमाना हो चुका है ना, हर चीज दबी देखा जाए, ये वाला पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, 10th 12th का पेपर भी लीक हो जाता है, सोचिए मतलब। और वो पेपर फिर आखिरी में देना पड़ता है, मुझे लगता है जो पेपर लीक हुआ था हो रहा है ना उसमें डबल मार्क्स मिलने चाहिए, हमें डबल नंबर मिलना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं बच्चे ने पढ़ा होगा और दे दो इनका नंबर। लेकिन ये पेपर लीक इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी, सोचिए। सो इसी के ऊपर ये जो टेलीग्राम है इसको बैन करने का फैसला दे दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चलाते हैं तो थोड़ा सा दुखद खबर है। देखिए मेहनत करिए और आपका मेहनत ज़रूर रंग लाता है, लेकिन जो करोड़ों बच्चे हैं उनका मेहनत पे पानी फिर जाता है, सो बड़ा दुख होता है कि मेहनत करो भी और ऊपर से पेपर लीक हो जाए, सोचिए इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है जिंदगी में। और एक मेरे पास मैसेज भी आता है, चलिए उनको शामिल करते हैं। रीना जी, हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी है आप? बहुत अच्छे जी, बिंदास गाने सुना रही हो। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है, मैम चाय पी लीजिए। हाँ जी, हमने चाय पी लिया है, आपका शो सुन रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही है, लेकिन जब भी कमरे में जाओ तो लगता है भैया आग सी जल रही है। चलिए जी, एक और गाना आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा, इस गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: क्या बात है जी। और ये गाना शादियों में ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गाना जरूर बजता है। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, चाहते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 6:00 यानी कि 27 मिनट हो चुके हैं। और एक बहुत ही प्यारा अपडेट, यानी कि आज 16 जून है और कल 15 जून था। सो कल 15 जून को यानी कि गदर मूवी ने 25 साल अपने पूरे कर चुके हैं। और उनको इस 25 साल पूरे करने के बाद उनको मिला है यानी कि सिल्वर अपडेट, मतलब जो उनको बॉलीवुड से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो उन्होंने अपने यानी कि जो उनके फैंस हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा शानदार जो मैसेज उन्होंने भेजा है कि आज भी लोगों ने अपने दिलों में तारा सिंह को जिंदा रखा है और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए जो भी आप कोई काम करते हैं ना उसके लिए जनता बहुत मायने रखता है। अगर जनता के दिलों में आपने जगह बना लिया फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सो इनको यानी कि सिल्वर जो अवार्ड है वो उससे सम्मानित किया गया है। सो देखिए जिंदगी में ना कोई भी काम करिए, अगर वो काम आपका सक्सेस हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो हर कोई उसको याद किया जाता है। और यानी कि भाई गदर जो मूवी थी ना, पार्ट पहले की बात कर रही मैं, बहुत ही शानदार मूवी थी ये। और ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसने ये मूवी नहीं देखी होगी, गदर मूवी बहुत ही प्यारा मूवी। तारा सिंह का जो किरदार इन्होंने निभाया सनी देओल ने, सच बताऊं माइंड ब्लोइंग। इतनी इनके जितने भी मूवी होती है ना बड़ी फंटास्टिक वाली होती, बहुत ही शानदार वाली होती है। सो अब रीना आप सभी के लिए लेकर आने वाली है क्या जी? अरे अरे अरे रुको रुको, मैं आप सभी के लिए अब लेकर आने वाली हूँ एक कड़क सवाल जिसके लिए सोचना तो पड़ता है कि इसका राइट आंसर क्या होएगा। सोचने के लिए मजबूर तो होना पड़ता है, गूगल देखना पड़ता है भैया कि यही राइट आंसर है या ये नहीं है। चलिए वो भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही प्यारा यानी कि कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।
3: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
4: प्रकृति से खुशियों की लहर।
5: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

हाय हाय, क्या बात है। जेसीबी चरीना लेकर आ गई है कड़क अपडेट। और जो भी देखे राइट आंसर आज जिनका भी आने वाले उनको मिलने वाले फूड वाउचर। तो अगर आप रेडी है फूड वाउचर जीतने के लिए तो आपको देना पड़ेगा राइट आंसर। यानी कि फिर आपको द ग्रिल्स की तरफ से मिलेंगे फूड वाउचर। सो उसके लिए क्या करना है जी, हमें आपने फटाफट मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर। और आज की कड़क सवाल यही है, वह चीज जो जितना सोखता है उतना ही गीला हो जाता है, क्या है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जब भी हम नहाने जाते हैं उसकी नीड हमें बहुत जरूरत होती है, बहुत, उसके बिना तो हम भाई काम चल ही नहीं पाता है। सो आपने सोच कर बताना है जी। वंस अगेन एक बार और सुनिए, जो जितना सोखता है उतना ही गीला होता है, सोचिए वह क्या है। मम्मी भी जब आप इधर उधर रख दो ना, बड़े डांट लगाती है कि इसको बाहर सुखा के आना चाहिए था, इसको अंदर नहीं, ऐसे बेड पर नहीं रखना चाहिए, ये बैड मैनर्स होता है। मम्मी हर बार बोलती है और डांटती भी है कि इसको हमेशा बाहर सुखा कर आपको आना चाहिए था बेटा, गंदी बात है। सो हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार कड़क सवाल है, जो जितना सूखता है उतना ही गीला होता है। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल एक और बहुत प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। चलिए जी,

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है आर्जरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:45 हो चुके हैं, और वहीं वेदर की बात करूँ तो अभी मुरादाबाद में यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस है। और देखिए, कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उसके लिए आप स्टेशन पर देखेंगे और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि भाई क्या ही कह सकते हैं। और ये बिहार पुलिस भर्ती यानी कि आज और 17 जून, ये 2 दिन एग्ज़ाम रहने वाले हैं। और इसमें इतनी, मतलब सोचिए, जो बच्चे दूर दूर से एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई तो 1-2 दिन पहले ही अपने घर से निकल जाते हैं कि भैया समय पर पहुँचना है, क्योंकि हमने जो मेहनत की होती है ना, उसका परिणाम एग्जाम के बाद ही पता चलता है कि आखिरकार जो हमने इतनी मेहनत करी है उसका फल तो आना चाहिए, उसका फल तो मिलना चाहिए ना। और देखिए, कोई भी मेहनत करते हैं ना, आज निकल तो आपको फल मिलता ही मिलता है। कहते हैं ना, किताबें दगाबाज होती है लेकिन आपको कामयाब करके छोड़ती है जनाब। इसीलिए किताबों से प्यार कीजिए। और बस उन सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं ना, पॉजिटिव होके जाइए, बी पॉजिटिव। आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में नहीं लाना है कि किसी ने कहा भैया नहीं, ये चीज़ ज़रूर पढ़ कर आना चाहिए था, तो दिमाग में घूमता है यार सच में वो पढ़ के आना चाहिए ना। अगर आप ये चीज़ सोचते हो तो आपने जो पिछला जो पढ़ा होता है ना, वो भी स्किप हो जाता है। और एग्ज़ाम के टाइम ऐसा होता है, जब आप बैठो ना एग्ज़ाम देने, तो जो भी दिमाग में आपको, आप पढ़ के आए हो, रीड करके आए हो, जो होता है सब आउट हो जाता है। इसीलिए शांत दिमाग को अपना शांत रखना है। जब भी एग्जाम आप देने जाते हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हो, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आप उतने ही एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे। सो आज का कड़क सवाल यही है भैया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा कड़क सवाल मैंने आपसे पूछा है। जो जितना सोखता है उतना ही गीला होता है। और मैंने फॉर एग्जांपल भी बता दिया आपको कि जब भी नहाने के बाद वो ज़रूर यूज़ किया जाता है, अगर आपने इधर उधर रख दिया तो मम्मी डांट फटकार भी लगाती है। और क्योंकि अगली बारी आपके मैसेज के ही हैं, आपके मैसेजेस शामिल करने वाले हैं, इसीलिए आपने मैसेज करना है, नंबर है 9837896896, कि जो जितना सोखता है उतना ही गीला होता है। क्या है वो चीज़ जो जितना सोखता है उतना गीला होता है? फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया। और अब बारी है आप सभी के मैसेज की, तो चलिए देखते हैं भैया किनका क्या मैसेज आते हैं हमारे पास, यानी कि राइट आंसर के साथ ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आज का जो कड़क सवाल है बहुत ही सिंपल है, जो कि यानी कि सोखता, जो जितना सोखता है उतना गीला होता है। आखिर कौन चीज है जो जितना सोखता है उतना गीला होता है? चलिए वो तो मैसेज देखने के बाद ही पता चलेगा कि किनका हमारे पास राइट आंसर आया है। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहने की तौलिया है। ओके जी, टॉवल है। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करते मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं और इनके दोस्त है सैयद सारी कली। गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है, थैंक यू सो मच जी। और राइट आंसर होता है तौलिया, क्योंकि तौलिया जब नहाते हैं तो हमारा शरीर गीला होता है और हम जब तौलिए से साफ कर लेते हैं तो शरीर साफ, तौलिया गीला। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया लॉजिक जोड़ दिया इन्होंने तो, क्या बात है जी, फैंटास्टिक। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज हमारा हमारे पास आता है, चलिए देखते हैं जी किनका क्या मैसेज आ गया। संजू जी कनेक्ट होती हैं। हाय दी, हाय रीना दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी, कचौड़ी खाने आ जाइए। ओ माय गॉड यार, ये मेरा फेवरेट कचौड़ी, ओ हो, उसके साथ आपको मतलब दही हो तो बड़ा मजा आता है। और कचौड़ी भाई क्या ही बोले, कचौड़ी के लिए इतना मजा आता है ना, मतलब मेरा तो फेवरेट वाला चीज है। आपका फेवरेट है तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, टावल है। और गुड इवनिंग रीना दी, कैसी हैं आप? ये हमारे साथ नेहा एंड स्वाति कनेक्ट होती हैं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये राकेश जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि मैडम टॉवल है, जब भी आप नहाओ टॉवल सूखा रहता है लेकिन बॉडी गीली, और उसके बाद नहाने के बाद बॉडी सूख जाता है लेकिन टॉवल गीला हो जाता है। क्या बात है जी, बहुत ही लॉजिक तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, है ना जी। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ पूनम जी कनेक्ट होती हैं, यानी कि बुद्धि बिहार से, और इनका कहना है कि टॉवल है मैम। और अभी सच बताऊँ तो आपका जो शो सुन रही हूँ बड़ा मज़ा आ रहा है और साथ ही साथ गाने बड़े अच्छे हैं, काम भी कर रही हूँ और रेडियो भी सुन रही हूँ, और मैं अपने बच्चों को फ़ोन से भी दूर रखती हूँ, और मतलब मेरे घर में रेडियो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है, जो कि बड़ा मज़ा भी आता है और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, वो भी डांस करते रहते हैं, उनको भी फ़ोन चलाने का मौका मिलता ही नहीं है। क्या बात है, कंचन जी कनेक्ट होती हमारे साथ, यानी कि लाइन पार से हैं, और इनका कहने की टावल है और मैं अभी ऑन द वे हूँ और आपका रेडियो सुन रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, साथ ही साथ जो आपकी आवाज है सुरीली, और भाई सच बताओ बहुत प्यारी आपकी आवाज है, थैंक यू सो मच जी कि आपको मेरी आवाज अच्छी लग रही है, मुझे पता चल गया कि मेरी आवाज अच्छी है। और इनका कहना कि आप हंसती भी है ना तो भी बड़ा अच्छा लगता है, ओ माय गॉड बोलती है तब भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैं आपका शो पहली बार सुन रही हूँ, यानी कि मेरी फ्रेंड है और जो आपका शो सुनती है उसी ने बताया था कि शाम का शो जरूर सुनना, और आज मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ओ माय गॉड हंसना बोलना, और जो बहुत प्यारी बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। वो भी खुश। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ईदगाह मुरादाबाद से सफ़ी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, आपका शो सुन रहे हैं, अच्छा पेश कर रही हैं आप। आज का सही आंसर होता है तालिया, आपने तो सर यानी कि पहले हमने बोल दिया तो आंसर आ गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आए हमारे पास, सो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके प्यारे मैसेज आते हैं हमारे पास। सो अभी अगर मैं बात करूँ
तो हमारे साथ यानी कि विनम आज की विनर होती हैं पूनम जी। इन्होंने सबसे पहले राइट आंसर दिया है और इनका राइट आंसर हमारे पास आ गया था यानी कि 6:00 यानी कि 35 मिनट पर इनका राइट आंसर आ गया था हमारे पास। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाज़त और आप अपना फूड वाउचर भी लेने आ सकती हैं। और अच्छा जी, अगले एक और मैसेज आ गया है। इनका कहना है कि रीना जी, जब आप यह कहती हैं समय की बात करूं तो 6:15 हुए हैं, समय बताती है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, समय में बताती हूँ वो है ना, अच्छा लगता है ना कि आपको समय का भी पता लगता रहता है कि हाँ भाई इतना टाइम हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, क्योंकि जब हम काम में बिजी रहते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता है। तो पूनम जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा और हमारा स्टूडियो आपको आना पड़ेगा अगर आप चाहते कि फूड वाउचर आप एंजॉय करें। तो चलिए जी, इसी के साथ बाबा टाटा टेक केयर। 7 बज चुके हैं और अब मेरे यहाँ से जाने का भी समय आ गया है, लेकिन उससे पहले गाना, फिर कमर्शियल आर्ट ब्रेक। उसी के साथ बाबा टाटा टेक केयर, अपना ध्यान

0: रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि 21 जून को नीट यूजीसी परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026, जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
5: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगिया यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से ये भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
5: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर से, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर है उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
5: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, फिर एडवोकेट।
6: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानद उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
5: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
6: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं। अच्छा, उससे पहले। फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, उनके लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई। मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
5: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
6: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर क्या होता है, जैसे कई एक जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है, या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
5: उसके फोन में कनेक्ट
6: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
6: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
1: करेक्ट करेक्ट।
6: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना है।
1: लेकिन
6: आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
6: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है, वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि भाई जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
1: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
6: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
1: एक आसान जरिया।
6: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, ठीक, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दें, और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
6: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
1: पैसे
6: चाहिए थे या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
1: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
6: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी
1: दे दिया।
6: तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
1: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
6: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है।

0: आता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: तो हमें कभी भी श्रोता हो ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी पैन या पासवर्ड मांगता है?
0: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है चाहे वो वित्तीय संस्था है वो कभी भी ओटीपी पिन एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए। तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
1: बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें। तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें, और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेरिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
0: बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
0: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे
1: दीजिए,
0: तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर, आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
0: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने क्यूआर कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये
0: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
1: ये बिल्कुल
0: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है, और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
1: बिल्कुल
0: नहीं,
1: देना,
0: नहीं
1: है
0: देना है। और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोता। और
0: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है तो उसको भी साझा ना करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
0: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
1: बिल्कुल। मैसेज क्यों करेगा? क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
0: तो आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
1: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में श्रोताओं। आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
0: देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं, कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ED से हम बोल रहे हैं, कभी CBI से कभी वो CBI या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
1: बिल्कुल।
0: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
1: क्या बात।
0: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
1: नहीं है,
0: ठीक है? किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें, या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फोटोज दिखा के उसपे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो प्रूफ मिल गया उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है, या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब वट एवर कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
1: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें। जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है, और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं, कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टाइजमेंट कोई फेसबुक पे

0: इस आपकी बेनिफिट
1: वो होते हैं जीवाणु होते हैं
2: जी,
1: जैसे फास्फोट सोलिबलिंग बैक्टीरिया हो गया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग, अभी तो सबके बोरोन के भी आ गए, सभी के बैक्टीरिया आ गए। तो उसके बाद में ये जो जैविक खाद है कूड़ी का खाद होता है। देखिए जब से मैकेनाइजेशन आई है हमारे गन्ने में, तब से हमारे बैल पशु कम हो गए और खाद की उपलब्धता कम हो गई। तो किसान भाइयों से ये कहूंगा उसको खाद को बराबर डालते रहे, जितना डालोगे उतना ही फायदा होगा।
2: जी बिल्कुल फायदा होगा। डॉक्टर नीतू सिंह जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों का।
3: अंतर्गत आप सुन रहे थे गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन विषय पर विशेष जानकारी। आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीतू सिंह और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया।
4: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड।
5: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ किसान भाइयों।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
10: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज

0: प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने,
1: बिल्कुल खान जी, हाँ जी सर,
0: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
1: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है।
0: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है। स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथा स्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
1: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है।
0: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थाई रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
1: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
0: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
1: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
0: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है, तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पे कुछ नहीं कर सकते।
1: हाँ बिल्कुल सर, उस पे जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
0: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
0: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
0: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी, एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल,
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल लगा सकती है, अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है, तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है, तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ।

0: बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है,
0: जी
1: जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपने लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को, जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता ही
0: जी
1: जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: बहुत बहुत

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और अन्य आगंतुकों को अपनी बारी की प्रतीक्षा के दौरान व्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में इसे प्रतीक्षालय तक सीमित न रखकर इसे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक ज्ञान और कौशल विकास केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां कानून, प्रशासन, करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर भी स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं को नई जानकारी, कौशल विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज का नया भारत संकल्प और गति के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, बोगीबील ब्रिज और चेनाब ब्रिज जैसी परियोजनाएं देश की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग क्षमता और बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए की गई पहल ने कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित किए हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 पर पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रगति पथ यात्रा के दौरान लोगों को इन उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि जल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसका विस्तार करना पर्यावरण अनुकूल राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इस प्रकार की मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणालियां भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर जल भराव की समस्या को कम करने तथा दिल्ली में शहरी जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समीक्षा के दौरान श्री संधू ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से प्रणाली की संरचना, परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने आगामी मॉनसून को देखते हुए शहर में ऐसी पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से अपनाने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: तरनजीत सिंह संधू ने खान मार्केट में चल रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि खान मार्केट जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थलों की उन्नति, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, यातायात और पैदल यात्री प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा आगंतुकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, क्षेत्रीय आवागमन तथा संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और NCR से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है क्योंकि ये नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ यमुना, गंगा और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा कि अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
3: समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ताकि मौसम
4: संबंधी personalization and an inventory of features to up your game at every level like GX control to help rein in your
3: ध्यान देने पर बल दिया। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। सुपर्णा और शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा है कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर एक समग्र समाधान प्रदान करता है। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बुजुर्ग आबादी में वृद्धि हो रही है जिससे स्वस्थ वृद्धावस्था एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गई है। डॉक्टर रीमा ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायामों का समूह नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की 108वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कम आयु में स्वयं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने सादगी और सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते हुए दिल्ली के विकास, किसानों के कल्याण और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम किया। राजधानी में आज सुबह के समय बारिश हुई और आसमान में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सुव्यवस्थित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।
4: हर घर

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद। एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी अगर आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं। और आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: तुमने बुलाया ही नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
0: अरे यार एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम के हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताए, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
0: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करिए भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती। अखिल भैया बता रहा हूँ आपको,
1: तभी बार बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
0: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार हैं, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सो वेल कैसे हालचाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के लग रहा है?
1: सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है,
0: बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा वाले
1: युवा शायर
0: उनको हमने बुलाया है। सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
2: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
0: अच्छा ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
0: वाओ वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्यों अखिल भाई।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो।
0: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
2: थोड़ा नर्वस,
0: नर्वसनेस हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, उनको याद भी है या नहीं?
2: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, उसमें मिले थे हम।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
2: एक दो बार ट्राई करी थी।
0: अच्छा
2: मैंने।
0: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
2: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
0: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से है मुरादाबाद में?
2: मैं मुराद में एक्चुअली रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ जो चमक पुल के पास है।
0: अच्छा भैया ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
2: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
0: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
2: आगे मेरा एमबीए करने का प्लान है।
0: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
2: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
1: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
0: यार, मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक, एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए भाई।
1: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
0: नहीं भैया मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
2: नहीं,
0: फिर
2: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
0: अच्छा
2: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
0: ओ वाह अच्छा ऐसा भी है,
2: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
0: अच्छा
2: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, मैं वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
0: ऑल राइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
1: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो, यार कहां दिल तोड़ोगे।
0: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
2: ओम अग्रवाल।
0: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहां अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
2: मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
0: अच्छा तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
2: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखो, क्या ही लिखूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
0: ऑलराइट मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद, है ना?
2: कोई शब्द ही नहीं है।
0: नाइस वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ आपका साथ देने आए हैं इनका क्या नाम है?
2: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, तो ये कब से आपके साथ हैं?
2: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर तो।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
2: दोस्ती में
0: कोई डिस्टेंस नहीं आया, बहुत बढ़िया। नहीं यार आजकल दोस्ती भी जो है ना लोग कहते हैं कि वक्त और टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती
1: मेरे
0: है।
1: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई, मेरे एक बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड है।
0: अच्छा।
1: राहुल जैन करके।
0: अरे वाह।
1: तो मैं 9th क्लास में था उस समय और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी.
0: ऑलराइट.
1: तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है, यहाँ भी तू चल तुझे तो कल देख लूंगा. मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों. तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली. तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं. ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स. तो वो एक कार्ड लेके आया. तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था. जैसे अभी गुप्ता जी ने
0: कहा, आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो कि कुछ और ही मामला होगा. तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में ना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम. क्यों, आपको क्या लगता है?
2: देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है.
0: एब्सोल्युटली
2: इंसान सब अच्छे होते हैं.
0: करेक्ट.
2: तो ढूंढना होता है बस.
0: अच्छा कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है.
2: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार. बस सीखा हूँ.
0: अरे वाह,
2: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की.
0: क्या बात है. वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप.
2: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों की वैल्यू नहीं दी थी.
0: ओके.
2: तो मैंने उससे सीखा.
0: होता है ना जब नया नया बंदा आता है तो तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म. वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो.
2: हाँ कह सकते हैं.
0: ऑलराइट. अच्छा ये जो ओम जी हैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए. आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेरो शायरी भी होगी यार आज की शाम. सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए. वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो.
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर. 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद.
3: कॉल 8826213131.
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स. यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट.
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है.
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद. मोबाइल नंबर 7055070552.
0: हेलो जी, कैसे हाल चाल?

0: वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास अरे मैं एंड साथ में अखिल अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अखिल जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं,
1: मजा तो आ रहा है। और
0: आनंद जैसे कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं,
1: बिल्कुल सही। मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है ना, भी इसे टकराना। तुम यहाँ अभी भी
0: ग्रीटिंग ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की?
1: दोनों दोनों बनिए सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा, बनिया अग्रवाल को कहते हैं? एक मेरी भी दोस्त है, वही बनिया है, फिर समझ गया हूँ मैं।
1: जैसे श्रोताओं में हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसे ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे हैं।
0: ये हमेशा अपनी शायरी में ना मेरे को चपले पढ़वाते हैं, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह।
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए,
0: क्या बात है।
1: अपना कहने से कोई अपना नहीं होता,
0: वेरी नाइस।
1: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए,
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाएं यार, देखो किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ,
0: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो,
0: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो,
0: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है, तुम मेरा चांद हो मेरी आंखों को रोशन करती हो, तुम मेरा चांद हो मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया, ट्रू, क्या बात है, शानदार शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
2: खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं।
0: अरे वाह, आपके फेवरेट शायर कोई जिनको आप याद, यू नो?

0: जी तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज़्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा।
1: मैं सोचता हूँ मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी,
0: अच्छा
1: वो एंड में ही लिखा जाएगा। मतलब तो हर रोज सोचता हूँ कि अपडेट करना है अपने आप को, तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के। कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी आप जो आपकी बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचे, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया, तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
1: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखे हैं उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
0: वेरी नाइस यार।
1: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा, अभी लिखा है शुरू शुरू में। मेरे को लगता है वो वहाँ थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में। यार तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज़ लिखी है। तो मैंने ये चीज़ लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफ़र आ रहा होगा,
0: वाह
1: जब करीब विसाले मोहब्बत का सफ़र आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नज़र आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नज़र आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा।
0: वाह
1: काफ़ी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोच कर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
1: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सदर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
1: सूरज की रोशनी से बचाने सदर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत ही
2: शुक्रिया।
0: बढ़िया।
2: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा इन्हें।
0: यार मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें ज़रूर मिलेगा। पर अच्छा यार एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज़्यादा अच्छे आते हैं।
1: देखो वही कहता है ना, जब कोई चला जाता है उसकी हिम्मत ज्यादा होती है तो समझ में आता है कि हाँ यार
0: लेकिन
1: जब
0: यार
1: थी तो सोचा नहीं
0: ऐसा तो
1: था।
0: नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना फिर तो।
1: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
0: मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
2: तो ओम जी उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत तो जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था इसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ
0: नहीं
2: तभी
0: यार,
2: आपने
0: ऐसा
2: स्टूडियो
0: तो
2: बुलाया?
0: नहीं होगा। खैर
2: नहीं
0: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा है यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उम्दा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया।
1: शुक्रिया।
0: अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा ओम जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि प्यार प्यार तो प्यार है ही, लेकिन प्यार को इतना ज़्यादा लोगों ने आजकल ऐसा बना दिया फैशन है ना, प्यार प्यार की तरह रहा नहीं है। अखिल भाई से मैं, अखिल भाई आपको बताऊंगा आपके टाइम में तो अलग ही प्यार होते होंगे
2: मेरा टाइम क्या मतलब, मैं क्या कोई बहुत पुराना
0: अरे
2: मॉडल
0: यार
2: हूँ?
0: आप अभी इस टाइम पे आपको देख के तो लग रहा है बहुत हमारे से तो बहुत पुराने मॉडल हो, नो डाउट यार। सबको पता है तो मतलब आजकल की जिनसी का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है,
2: वो
0: ठीक है। आजकल वो
2: प्यार
0: व्हाट्सएप वाला इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया है, तो उस पे 2 मिनट में वो वाली आ जाती है जो तुम्हें इंप्रेस करेगी, 2 मिनट में ऐसी आती है तुम्हें ब्लॉक करेगी। तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
1: अट्रैक्शन कह सकते हो पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज़ है।
0: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब एक जिसे कह सकते हैं एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, या अभी भी
1: नहीं
0: है जिंदा?
1: जिंदा है तभी तो हम जितना है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है वो तो बढ़िया सा और सुना दो यार एक और, फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
1: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से। आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मैं उससे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा।
0: ठीक है
1: तो
0: करेक्ट।
1: उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को अपने उसको मैंने लिखा है।
0: अरे वाह
1: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास

0: पास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो।
1: वाह।
0: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो। मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो। मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो। मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूँ ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा करते हो।
1: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया,
2: शुक्रिया
1: ओम जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। गाइस आपको भी आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। आपने हिम्मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
2: गुनगुनाते
1: रहिए।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज।

0: है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बात हुई शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र

0: अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz और आपका अपना नया शो दिल से दिल तक अखिल के संग। तो क्या हालचाल हैं आप सभी के? पूरी पूरी उम्मीद है कि ऑफिस से निकले होंगे, अगर थके हारे तो पहुंचने वाले होंगे घर और घर में मिलने वाला होगा बढ़िया सा खाना। खाना तो मिलेगा साहब। दोस्तों, ज़िंदगी की किताब में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते। आज हम बात करेंगे अपनी पहली ट्रिप की, एक वो ट्रिप जो हमेशा यादगार रहती है, कहीं ना कहीं आपको ख्यालों में रहती है कि यार वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने ये टोपी पहनी थी और ये चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाए थे। क्या आपकी पहली यादगार ट्रिप फैमिली के साथ थी, या फिर आपने कभी सोलो ट्रैवल करके दुनिया को अपनी नज़रों से देखा हो? तो आज के शो में होगी आपकी सारी यादें, आप ही के मैसेजेस और कुछ दिलों को छू जाने वाली शायरियाँ। तो मैसेज करें 9837896896 पे और कॉल करके बताएं अपने दिल की कहानी। चलिए करते हैं दिल वाली शायरी से शुरुआत। सफ़र का मज़ा मंजिल से कम नहीं होता, सफ़र का मज़ा मंजिल से कम नहीं होता, हर रास्ता किसी कहानी से कम नहीं होता। जो यादें सफ़र में मिल जाती हैं, जो यादें सफ़र में मिल जाती हैं, उनका मोल दुनिया के किसी खजाने से कम नहीं होता। जी हाँ, तो यही सफ़र हैं जो कभी कभी मुस्कुराते मुस्कुराते आपको याद आते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले म्यूज़िकल सॉन्ग से और सुनते हैं इश्क मिटाए हाय हाय।

0: तो दोस्तों अभी सुन रहे थे आप इश्क मिटाए हाय हाय, मूवी का नाम था अमर सिंह चमकीला और सिंगर है मोहित चौहान जी, म्यूजिक डायरेक्टर है AR रहमान साहब। तो अभी हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़ी हैं और वो भी आज कुछ दिल से अपनी बातें बोलना चाह रही हैं, तो सुनते हैं, करते हैं उनसे बात। नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम अर्चना।
0: अर्चना जी क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, रहती हूँ घर में।
0: तो अर्चना जी आज आप हमारा शो सुनती हैं? आज आप पहली बार सुन रही हैं हमारा शो या सुनती हैं पहले भी शो?
1: पहले से सुनते हैं।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं एक ट्रिप की जो कभी ना कभी करी होती है और कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं ना, जब पहली बार कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो कहाँ गए थे आप पहली बार कभी घूमने?
1: हरिद्वार।
0: हरिद्वार घूमने गए थे? तो हरिद्वार की कुछ यादें आपके साथ हैं या नहीं?
1: हमारी बेटी है।
0: अच्छा, और कौन? हाँ जी,
1: हमारी बेटी हमारी पति है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप सब घूमने गए थे।
1: हाँ।
0: चलिए, तो बढ़िया रहा था ट्रिप? सही है सही है। तो गर्मियों में ही घूमने गए थे कैसे?
1: गए थे घूमने के लिए।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपने दिल से?
1: गाना सुना दो, प्यार की राहों में छोड़ दिया, दिल मेरा तोड़ दिया।
0: प्यार की राहों में छोड़ दिया, दिल मेरा तोड़ दिया।
1: हाँ।
0: जरूर अर्चना जी, ये गाना सुनाते हैं, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ी थी अर्चना जी और अर्चना जी ने गाना फरमाइश की, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे फैमिली ट्रिप की। तो अर्चना जी ने कहा मैं तो हरिद्वार गई हूँ अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। और ऐसे ही होता था, हम भी जब कभी फैमिली ट्रिप की बात होती थी तो कहते हैं कुछ अलग ही उसके नज़ारे होते थे। पापा का रूट बताना होता था, मम्मी का पूरा खाना पैक करना होता था और बच्चों का हर 10 मिनट में पूछना कि कहाँ पहुँचे पापा और कितना टाइम लगेगा। तो ये रहता है कि जब भी कहीं जाने का हो तो बच्चों की ज़रूर आवाज़ आती है कि पापा कितनी देर में पहुँचेंगे, कितना टाइम और लगेगा। और सच कहूँ फैमिली ट्रिप सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होती बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए होती है। हमारे एक लिसनर जी का मैसेज आया नेहा जी का MDA से, मेरी पहली ट्रिप नैनीताल की थी, मैं सिर्फ 10 साल की थी तब। आज भी फैमिली के साथ बोटिंग और मॉल रोड की यादें मेरे दिल में बसी हुई हैं। बहुत नेहा जी, वहाँ की तो यादें हमेशा, नैनीताल ट्रिप की तो यादें सभी के दिलों में रहती हैं। नैनीताल है ही ऐसी जगह और मुरादाबाद से सबसे पहले रीच में नैनीताल ही पड़ता है। एक शायरी लिखी है अरबाज जी ने कटघर से, घर से निकले थे कुछ पल बिताने के लिए, सफ़र ने यादों का खजाना दे दिया, परिवार के साथ गुजरा हर लम्हा, ज़िंदगी ने सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया। क्या बात है अरबाज जी, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। चलिए अर्चना जी की ख्वाहिश जो दिल से निकली हुई है वो पूरी करते हैं अभी और सुनते हैं। और आप भी अपनी ख्वाहिश, अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं दिल से दिल तक अखिल संग 9837896896 पे।

0: बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। गाना इतना, कहते ना कि कभी कभी आप गाने में खो जाते हैं, तो उन्हीं में से एक गाना था। और हमारे पास अभी बात चल रही थी हमारे सफ़र की, कि ट्रैवल का आप कैसे आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन अचानक बैग पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी पहचान ढूंढने। सोलो ट्रैवल सिर्फ जगह देखना नहीं होता, सोलो ट्रैवलिंग में ये खुद को समझना और एक सफ़र को कैसे किया है पूरा, उस सफ़र को समझने जैसा होता है कि जब आप एक बार सोलो ट्रैवलिंग पर निकल जाते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है अमन जी का दिल्ली से, वो बताते हैं, मेरी पहली सोलो ट्रिप ऋषिकेश की थी। डर भी लगा, एक्साइटमेंट भी था, लेकिन वहाँ जाकर जो कॉन्फिडेंस मिला वो आज तक मेरे साथ है। सही कहा आपने अमन जी, सोलो ट्रैवलिंग में अगर आप कहीं आप एक बार प्लान करते हैं और जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आता ही है, क्योंकि कई सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसे आपको खुद ही लेना पड़ता है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता या किसी से कहना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने देखा सिचुएशन के हिसाब से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपको आगे अपना ट्रांसपोर्ट बदलना है या कुछ भी कोई मीडियम चेंज करना है, किसी से लिफ्ट मांगनी है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है एक नया कॉन्फिडेंस देती है आप ही की इस ट्रैवलिंग में। अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक लिसनर, चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार दिल से दिल तक, कैसे हैं उस्मान जी?
1: दुआएं साहब आपके आशीर्वाद है।
0: सर क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: इस टाइम तो साहब मैं घर पे बैठा हूँ और मीका के पिक्चर का गाना सुनना, दिल की आरजू थी कि कोई दिल रुबा मिले।
0: क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं साहब, जरूर।
1: मोहम्मद उस्मान और साहब
0: उस्मान जी, जैसा आज हमारा जो शो है वो आज है ट्रैवलिंग के ऊपर, कि कैसे कभी कभी आप घूमने गए, तो कभी आप अपने समय में पहली बार कहाँ घूमने गए थे आप?
1: हम लोग तो अकेले घूमने गए थे, आगरा गए थे।
0: आगरा, आगरा में कहाँ कहाँ घूमे?
1: वहाँ आगरा में ताजमहल,
0: ताजमहल देखा आपने? और क्या क्या देखा है आपने उस्मान साहब?
1: वहाँ पर ये है कि
0: ये तो है उस्मान साहब, मैं भी दो बार जा चुका हूँ ताजमहल, और घूमने के लिए अच्छी जगह है वो भी। हमारे सात अजूबों में से एक अजूबा है वो भी। चलिए बहुत अच्छा लगा उस्मान साहब, ये गाना आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप जुड़े, आपने अपनी ट्रिप के बारे में बताया और हमारे को अपनी बातें भी शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान जी। धन्यवाद उस्मान जी, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ उस्मान जी जुड़े थे जो अभी छत पे आराम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी ट्रिप के बारे में बताया कि उन्होंने जो ट्रिप करी है वो भी सोलो ट्रिप करी है आगरा की। तो आगरा का तो कहते हैं ना, जब आगरा जाओ ताजमहल नहीं देखा तो फिर आगरा जाना क्या है, और दूसरा उसका वहाँ पे पेठा नहीं खाया। तो बहुत ही यादें जुड़ी होती हैं आपकी भी अपनी ट्रिप से। हमारे पास एक शायरी आई है, अभी मैसेज आई है हमारे पास, लिखते हैं प्रतीक। प्रतीक जी ने मैसेज किया है हमें शायरी में, एक अकेले निकला था राहों में मंजिल की तलाश में, अकेले निकला था राहों में मंजिल की तलाश में, रास्ते ने खुद मेरी पहचान बना दी, जो डरा था दिल के किसी कोने में छुपा, जो डर था दिल के किसी कोने में छुपा, सफ़र ने उसे हिम्मत की कहानी बना दी। क्या बात कही प्रतीक साहब आपने, बहुत ही अच्छी शायरी लिख के भेजी है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी कहीं ना कहीं सोलो ट्रैवल करके आए होंगे तभी इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए आप भी अपनी हमने ट्रैवलिंग मैसेज कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि कहाँ आप घूमने गए थे और आपको कैसा लगा और कैसी याद थी आपके साथ उसकी जुड़ी हुई जो दिल से निकले सीधे 9837896896 पे। तब तक सुनते हैं उस्मान साहब की फरमाइश का गाना, दिल की ये आरजू थी कोई।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: और कहते हैं ना कि गाना तब भी खूबसूरत होता है जब उसमें खूबसूरत आर्टिस्ट होते हैं। तो दोनों ही बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट थे, सलमा आगा जी और राज बब्बर साहब, जिनके जिनके ऊपर फिल्माया गया गाना। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नए श्रोता, एक हमारे विपिन रावत जी, सुनते हैं उनकी जवानी क्या कहते हैं वो हमसे। नमस्कार दिल से दिल तक। हेलो
1: नमस्कार सर।
0: सर, कैसे हैं आप?
1: सर हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। आपके घर में और स्टूडियो में सब बढ़िया है? सर
0: सब बढ़िया साहब, सब बढ़िया। तो आज विपिन जी,
1: जी
0: आज हमारी बात चल रही है एक ऐसी ट्रिप पे कि कभी आपने कभी ट्रिप करी है फैमिली के साथ या अकेले ही कभी घूमने निकल गए हो, और कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कहते हैं ना बहुत फेमस जगह है या आपकी फेवरेट जगह है जहाँ आपको बहुत शांति मिली हो, तो क्या रहा है आपके जीवन में ऐसा, कभी कहाँ घूमने गए हैं आप अकेले या परिवार के साथ?
1: सर फैमिली के साथ वृंदावन घूमने के लिए जाते रहते हैं तो बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर।
0: आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा और कौन कौन सी जगह आपने घूमी है जो आपने एक्सप्लोर करी है कभी?
1: माता है, वैष्णो माता है, जो मतलब जम्मू में भी कटरा, कटरा है, वहां से जाते हैं तो वहां पर भी गए हुए हैं। हाँ
0: अच्छा,
1: वैष्णो माता के दर्शन
0: हाँ,
1: किए हैं।
0: वैष्णो
1: हाँ
0: वैष्णो देवी माँ।
1: वैष्णो देवी माँ।
0: कोई ऐसी कोई यादगार कोई बात जो ट्रिप में कभी आपके साथ घटी हो, कहीं खाना ना मिला हो या कहीं खाना ज़्यादा ही मिल गया हो, कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी?
1: नहीं सर, ऐसी तो नॉर्मल बात चलती है, तो ऐसा तो हुआ कि हाँ कहीं थोड़ा मिला कहीं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं मिला। तो ऐसी छोटी मोटी बात है तो सर सभी के साथ तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है।
0: क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या सुनना चाहेंगे, कौन सी दिल से आवाज़ निकली आज, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है दीवाना, और इसमें जो है ऋषि कपूर जी हैं, उन्होंने रोल किया है इसमें,
0: अच्छा,
1: और वो बहुत अच्छा रोल किया है। और गाने के बोला तेरे दर्द है दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा।
0: चलिए विपिन जी, ये सुनते हैं अभी ये गाना आपकी फरमाइश का भी, और बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आप हमसे जुड़े।
1: सर ये जो राज भाई साहब है ये हड़क मारती है सर, ये कहाँ कहाँ भेज दिया आपने?
0: मैं आपको बताऊंगा कहाँ भेज दिए हैं, और आप मैसेज करेंगे तो हम आपको उनका पूरा पता बता देंगे।
1: ठीक है सर। सर
0: ठीक
1: गुड
0: है,
1: नाइट सर।
0: गुड नाइट विपिन जी, गुड नाइट।
1: ओके
0: तो ये थे विपिन जी जो हमसे जुड़े हुए थे और अपनी ट्रिप बता रहे थे कि मेरे को भी घूमने का बहुत शौक है, धार्मिक धार्मिक जगहों पे जाने का बहुत शौक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप धार्मिक जगहों पे घूमते हैं और जाके दर्शन भी करते हैं और अपने पल को एंजॉय भी करते हैं। हमारे पास अभी एक मैसेज आया है, और नीलम जी हमें शायरी लिख के मैसेज कर रही हैं। कभी घर वालों के साथ सफ़र कर लिया करो, कभी खुद के साथ भी वक्त गुजार लिया करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी, बस हर सफ़र को दिल से जी लिया करो। क्या बात है नीलम जी, आपने बहुत ही अच्छी शायरी लिख के भेजी है। तो दोस्तों, मेरी नज़र में तो फैमिली ट्रिप और सोलो ट्रिप दोनों ही ज़रूरी हैं। फैमिली ट्रिप हमें अपनों के करीब ले आती है और सोलो ट्रिप हमें खुद के करीब ले आती है। एक सफ़र रिश्तों को समझता है और दूसरा खुद को। तो चलिए सुनते हैं एक गाना, तेरे दिल से आवाज़ रहा, मूवी दीवाना, और हमारे विपिन जी का कहते हैं ना दिल से निकला हुआ एक तराना। तो सुनते हैं, चलिए दोस्तों।

तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, दिव्या भारती और अमरीश पुरी के ऊपर फिल्माया गया ये गाना। सिंगर थे कुमार शानू साहब और म्यूज़िक डायरेक्टर थे नदीम और श्रवण जी। लिरिक्स इसके बोल लिखे थे समीर साहब ने। तो अभी हम बात कर रहे थे अपनी ट्रिप की, अपने उस ट्रिप की जो हमने कभी सोलो या कभी फैमिली के साथ किया है। तो हमारे पास मैसेजेस बहुत हैं और मैसेजेस की कहते हैं ना थोड़ी सी बौछार लगना, सबने अपने अपने छोटी सी ट्रिप की चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं रामपुर से पूजा जी, जो कहती हैं फैमिली ट्रिप में जो सिक्योरिटी और प्यार मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। तो सही कहा आपने पूजा जी कि जब आप फैमिली ट्रिप पर होते हैं तो एक तरह की सिक्योरिटी और एक प्यार, सिक्योरिटी ऐसे है कि सब आसपास अपने घर वाले अपने जान पहचान वाले रहते हैं, और एक प्यार ये कि अगर भूख भी लग रही हो तो सामने वाला पहचान जाता है, यार लगता है ये इतना टाइम हो गया ट्रैवल करते करते तो कहीं तो इसे भूख लग रही होगी तो कुछ तो इसे खिला दिया जाए। तो बहुत सही बात बताई आपने पूजा जी अपनी ट्रिप के बारे में। हमारे पास रोहित जी का भी मैसेज है लाइन पार मुरादाबाद से, कहते हैं सोलो ट्रिप ने मुझे सिखाया कि मैंने अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। हाँ तो रोहित जी, अभी हमारे पास एक प्रतीक जी का भी मैसेज आया था, वो भी यही कह रहे थे कि सोलो ट्रिप ने उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया है। तो सोलो ट्रिप होता ही ऐसा है कि जहाँ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कहीं से आप दूसरी जगह जाते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में बदलती हैं। कहते हैं ना हमारे यहाँ तो हर किलोमीटर पर पानी का टेस्ट बदलता रहता है, तो सेम ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। हमारे पास सना जी हैं काशीपुर से, वो मैसेज करती हैं मेरी पहली ट्रिप कज़न्स के साथ मसूरी की थी, आज भी वो फ़ोटोज़ देखकर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो सना जी आपने बहुत सही बात कही कि ये जो फ़ोटोज़ ये कुछ यादें ऐसी देख के अपनी पहली ट्रिप की हमेशा मुस्कान तो आ ही जाती है। मेरे साथ भी ऐसी है, मेरी भी पहली ट्रिप मनाली की रही और मेरी एक स्कूल की ट्रिप थी, बस हम स्कूल बस से गए थे सबके सब मनाली, और वो आज भी जब मैं एल्बम निकालता हूँ अपने स्कूल की उस ट्रिप की मनाली की शिमला की तो वो स्माइल ना अपना आप ही आ जाती है। दोस्तों के साथ बैठ के बस में पूरे टाइम, कभी कुछ भी खाना, कभी कोई स्नैक्स ले लेना, कभी उसके टिफ़िन से जो उसके लिए पैक करके उसके अंकल आंटी ने दिया है वो हम उसे चट कर जाना, वो मेरे टिफ़िन की तरफ नज़र देखता था कि कब क्या है आया हुआ है अखिल के साथ, तो उसे वो चट कर जाता था। तो ये तो रहती है। हमारे पास एक शायरी भी आई है, अभी नरेंद्र जी का भी हमारे पास फ़ोन आया था कि अखिल जी को एक शायरी ज़रूर सुनाइए, तो मैं नरेंद्र जी आपकी बात को ध्यान में रख के शायरी आपको सुनाता हूँ, आपके लिए भी है और सभी श्रोताओं के लिए डेडिकेटेड है। तस्वीर में खुद कुछ लम्हे पुराने हैं, तस्वीर में कैद कुछ लम्हे पुराने हैं, आज भी दिल के बहुत करीब अफसाने हैं। सफ़र ख़त्म हो गया कब का लेकिन, सफ़र ख़त्म हो गया कब का लेकिन, यादों के रास्ते आज भी सुहाने हैं। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी फरमाइश आई, एक नन्नी परी की, धारवी की फरमाइश आई है MDA से, कहती हैं मेरे को ऑल इज़ वेल का गाना सुनना है। तो क्यों नहीं धारवी जी, हम आपके लिए प्ले करते हैं ऑल इज़ वेल का गाना और उम्मीद करते हैं आप डांस करेंगी और उसे हमारे साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगी, हम वेट करेंगे आपकी वीडियो का। चलिए धारवी जी।

हाँ जी, ऑल इज वेल। तो हम सुन रहे थे ऑल इज वेल थ्री इडियट्स का ये गाना, और इसके जो लिरिकिस्ट हैं स्वानंद किरकिरे जी, और म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा जी ने, सिंगर हैं सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान साहब। तो ये थ्री इडियट्स का जो ये गाना है ना, ये हमेशा दिमाग में आ ही जाता है। जैसे ही आप कहीं भी इस गाने को बोल को सुनेंगे तो ये अपना आप ही सारी पिक्चराइजेशन अपने आप दिमाग में आने लगती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस गाने का पार्ट हूँ, मैं भी इस गाने से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने इस आखिरी पड़ाव की ओर। 10 बजने वाले हैं। और दोस्तों, आज हमने बात की ट्रैवलिंग के ऊपर, सोलो ट्रैवलिंग और फैमिली ट्रिप के साथ। तो आज इस बात का जो निष्कर्ष है वो बस इतना सा है, चाहे पहली ट्रिप फैमिली के साथ हो या सोलो, अगर उस सफ़र ने आपको खुशी दी है, कुछ सिखाया है और कुछ यादें भी दी हैं, तो वही सफ़र सबसे खूबसूरत सफ़र होता है। अपनी ज़िंदगी में सफ़र करते रहें, क्योंकि मंजिलें याद कम रहती हैं, रास्ते और यादें याद ज़्यादा रहती हैं। तो हमेशा कहते हैं ना, एक अपने साथ जुड़ाव रहना चाहिए सफ़र का, कहीं ना कहीं ये छोटा सा बिना सोचे समझे। कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जहाँ हमें सोचना नहीं चाहिए कि यार कहीं प्लान नहीं करना पड़े कि आज मैं स्पेशली घूमने निकलूँगा तो नैनीताल की तरफ ही निकलूँगा या मसूरी या देहरादून की तरफ निकलूँगा। कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं, बस उठो और निकल लो यार, भले ही मुरादाबाद के 0 पॉइंट तक जाके रुक जाओ, मगर वो भी एक सफ़र है। तो एक आखिरी शायरी आप सभी के लिए, एक फाइनल शायरी सफ़र से रिलेटेड। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यादें बन जाती हैं ज़िंदगी की असली दौलत, यादें बन जाती हैं ज़िंदगी की असली दौलत। हर नए सफ़र में मुस्कुराकर चलो तो चलो, हर नए सफ़र में मुस्कुराकर चल सको तो चलो। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। मिलेंगे कल रात ठीक 9 बजे एक नए टॉपिक और एक नए एहसासों के साथ, एक नए दिल से दिल की बात के साथ, कि कोई तो बात होगी जो दिल में छुपी और वो निकलनी होगी यहीं। तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सुनते रहें दिल से दिल तक अखिल के संग। FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आपका अपना रेडियो स्टेशन, मुरादाबाद का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, लेते हैं प्यारी सी विदाई, और कल मिलते हैं आपको इसी समय पे ठीक 9 बजे मुरादाबाद FM 89.6 पर।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: सुनिए।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।